मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाण मास की तीसरी तिथि तदनुसार 24 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबू धाबी में संवाददाताओं से बातचीत

में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमेरिकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।

और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.2 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भगवान के चरणों में परम अनुराग ही भक्ति है, अर्थात भगवान के साथ प्रेम का संबंध होना, यही मुक्ति का साधन है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

पृथ्वी गौरी के लाल, देवलोक के तुम सरताज, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीन दुखियों के भाग्य विधाता, सुन लो मेरी पुकार, प्रभु कर दो नहीं अपार।

छूटी सी भी ना छूटी, प्रभु हाथ मेरा ऐसे थामना, छोड़े चाहे दुनिया सारी, साथ मेरा तू ना छोड़ना।

माखन चूर नंद किशोर बांधी जिसती पीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी पूछती जिने दुनिया सारी, ऐसी है लीला मेरे घनश्याम की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर्थी सुमन कल्याणपुर, चंद्रु आत्मा, साधना सरगम और साथियों की मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं महर्षि रमण के विचार।
1: यह संभव है या नहीं, इस संशय में पड़े बिना साधक को आत्मा के ध्यान में बराबर लगे रहना चाहिए। कोई बड़ा पापी हो तो भी उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और न ये सोच सोच कर रोना चाहिए कि हाय मैं तो पापी हूं, मेरा कैसे होगा उद्धार। आत्मा के ध्यान में अपने को बिल्कुल डुबो देना चाहिए, तब निश्चय ही सफलता मिलेगी। मन को लौकिक पदार्थों में और ऐसी बातों में जिनका संबंध दूसरों से है भटकने नहीं देना चाहिए। मनुष्य को दूसरों से चाहे वे कितने भी बुरे क्यों ना हो घृणा नहीं करनी चाहिए। कामना और घृणा दोनों से बचे। मनुष्य जो कुछ दूसरों को देता है वो सब अपने को ही देता है, औरों को कोई भी चीज देने से इनकार करेगा। हमारा व्यवहार जितना विनम्र होगा ना उतना ही अच्छा परिणाम निकलेगा। जब तक मन में वासनाएं हैं कि मैं कौन हूं, ये छानबीन जरूरी है। विचार जैसे ही मन में उठे उन्हें छानबीन द्वारा तत्काल वहीं उसके मूल स्रोत पर ही नष्ट कर देना चाहिए। जब तक शत्रु दुर्ग के भीतर हैं वे आक्रमण करते ही रहेंगे। यदि उन्हें सिर उठाते ही नष्ट कर दिया जाए तो किला हमारे हाथ में आ जाएगा। विचारों की जैसे ही वे उठे उनके मूल स्रोत पर ही नष्ट कर देना अनासक्ति है। जिस प्रकार गोताखोर अपनी कमर में पत्थर बांधकर समुद्र की तह में उतरता है और वहां से मोती ले लेता है, उसी प्रकार हमें कड़ी अनासक्ति के साथ भीतर गोता लगाना चाहिए और आत्मा का मोती ले लेना चाहिए। मन को निश्चल करना है। यह बात यदि एक बार समझ में आ गई तो फिर अनंत अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने भीतर है, पुस्तकों में नहीं। आत्मविचार के लिए खोज भीतर करनी है। आत्मा को अपने प्रज्ञा के नेत्र से जानना चाहिए। वस्तुतः एक समय ऐसा आएगा जब जो कुछ सीखा है वो सब भूलना पड़ेगा। आनंद आत्मा का स्वरूप है। आनंद और आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। संसार के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है। मन जब बाहर जाता है तो दुख अनुभव करता है। वस्तुतः जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है और आनंद का आत्मा का उपभोग करता है। इसी तरह निद्रा, समाधि और मूर्छा की स्थितियों में भी, और जब वांछित वस्तु मिल जाती है या अप्रिय वस्तु दूर हो जाती है तब मन अंतर्मुखी हो जाता है और शुद्ध आत्मानंद का उपयोग करता है। इस तरह मन बिना विश्राम लिए बराबर यही सोचता रहता है। वो आत्मा से बाहर जाता है और फिर उसमें लौट आता है। पेड़ के नीचे सुखड़ छाया है, खुले में झुलसाती गर्मी है और धूप है। मूर्ख आदमी छाया से धूप में और धूप से छाया में आता जाता रहता है। बुद्धिमान बराबर छाया में ही रहता है। सत्य को जो जानता है उसका मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता। वास्तव में जो जगत कहलाता है ना वो केवल विचार है। जगत जब लुप्त हो जाता है अर्थात जब कोई विचार नहीं रहता तो मन आनंद अनुभव करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो वो सुख का अनुभव करता है। ऐसी बात नहीं, वो दुख का अनुभव करेगा। सभी मनुष्य आत्मज्ञानी है। हर कोई पहले से ही आत्मज्ञानी है और सदा आत्मज्ञानी है। मनुष्य अपने

0: को बंधन में इसलिए मानता है क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा समझता है, जबकि आत्मा तो अनंत है, आत्मा शुद्ध है, चेतन है। जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं वो इस मिथ्या धारणा से मुक्त होना है कि मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई प्राप्त हुई है, वो मात्र अज्ञान का, अविद्या का नाश है। अविद्या पृथकता की भावना है जो मिथ्या है, क्योंकि अब सब एक ही चैतन्य है, आत्मा केवल एक है। वो जब सीमित है तो अहम है, जब असीमित है तो अनंत आत्मा है, वो मात्र सत्य है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे महर्षि रमण के विचार। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी खेती की उपयोगिता बढ़ाने के उपाय के विषय में कुंदन सिंह की वार्ता।

7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर एचएल राजपूत खून चढ़ाने से पूर्व सावधानियों के विषय में जानकारी देंगे। श्रोताओं, राधे श्याम के कई लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर, प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित राजन साजन मिश्रा का राग अलहिया बिलावल में ख्याल गायन। ग्यारह बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे चरित्र अभिनेता सतीश शाह के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा वैश्विक कूटनीतिज्ञ परिदृश्य पर महिलाएं और 12 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनिएगा नम्रता सिंघल की कहानी जिसका शीर्षक होगा एहसास। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा विश्व शांति की दूत महिला कूटनीतिज्ञ। मेरी माटी मेरा देश के तहत हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। श्रोता, राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की कई कष्ट हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर।

हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी प्रश्नों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे समावेशी कूटनीति में महिला शक्ति की बढ़ती भूमिका के विषय में हेबा जाफरी की वार्ता। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा और जीने की कला का विषय होगा संवेदनशीलता को बनाए जीवन शैली। 6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी पशुओं में टीकाकरण के विषय में डॉक्टर हरीश चंद्र की वार्ता। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ हम चर्चा करेंगे फसल चक्र की उपयोगिता के विषय में, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। शाम 6:30 पर मौसम मंडल कार्यक्रम में

सुनिएगा मनोज कुमार से काव्य पाठ। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा महिलाओं की प्रशासन में बढ़ती भूमिका। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा शादा जाफरी की वार्ता, जिसका विषय होगा महिलाओं को भी मिले बराबरी का हक। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का राग विहाग में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं खेती की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय के विषय में कुंदन सिंह की वार्ता।
1: खेतों की उत्पादकता, खेत की भूमि की गुणवत्ता, उर्वरता, सिंचाई साधनों की स्थिति, कृषि निवेशों के प्रयोग एवं क्षेत्र विशेष में एक समय विशेष के अंदर ली जा रही फसलों एवं उनके शस्य क्रम पर निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर खेतों की उत्पादकता चार प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उर्वरता में वृद्धि, खेती के लिए सिंचाई साधन एवं अन्य सुविधाओं का होना, क्षेत्रफल विशेष में एक निश्चित अवधि में फसलों का लिया जाना तथा शस्य क्रम एवं फसल सघनता, कृषि निवेशों का संस्तुत मात्रा में समय अंतर्गत सही विधि से प्रयोग। भूमि की उर्वरता का तात्पर्य यह है कि उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का पूर्ण समावेश रहे, जैसे फसलों को उगाने के लिए मुख्य रूप से नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, मॉलिब्डेनम आदि की भी पौधों को बहुत ही सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की यदि भूमि में कमी है तो उसके लिए मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों के लिए नत्रजनित, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों की मात्रा संस्तुत की जाती है। इसी प्रकार से फसलों में अन्य तत्वों की कमी के लक्षण फसलों में परिलक्षित होने पर सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग की संस्तुति की जाती है, जैसे धान में खैरा रोग के लक्षण होने पर जिंक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग एवं फूल गोभी का फूल विकृत निकलने की स्थिति में मॉलिब्डेनम का प्रयोग करें। भूमि में इन पोषक तत्वों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों द्वारा लगातार करते रहने से भूमि की मूल संरचना प्रभावित होती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में लगातार ह्रास होता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब भूमि में जल धारण क्षमता, तापक्रम संतुलन क्षमता तथा कार्बन नत्रजन अनुपात असंतुलित हो जाने से फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। साथ ही साथ नहरों के किनारे भूमि में जल स्तर ऊंचा होने के कारण तथा लवण के क्रम से ऊपरी सतह पर बने रहने से ऊसर भूमि हो जाने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अतः इन विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए किसानों को भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जहां एक ओर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ ही साथ हरी खाद एवं कंपोस्ट खाद तथा नील हरित शैवाल एवं अन्य जैव उर्वरकों का प्रयोग करना नितांत आवश्यक हो गया है, वहीं जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था तथा नहरों के किनारे सीपेज एवं तत्फल स्वरूप ऊंचे जल स्तर की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक उपाय अपनाने होंगे, तभी फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग का पूर्ण लाभ उठाया जा सकेगा और भूमि की गुणवत्ता भी बरकरार रह सकेगी। यह तथ्य सर्वविदित है कि बारानी क्षेत्रों की अपेक्षा सिंचित क्षेत्रों में भी सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता अधिक होती है। एक अध्ययन के अनुसार धान में सिंचाई सुविधाओं के कारण प्रति हेक्टर अतिरिक्त लागत 1292.45 रुपए 45 पैसे

0: आती है और उससे रुपया 1907 का अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गेहूं में सिंचाई सुविधाओं में प्रति हेक्टर 967 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त लागत आती है, जबकि अतिरिक्त प्रतिफल 2837 रुपये 70 पैसे आता है। इसी प्रकार से अनियमित वर्षा और सूखा की स्थिति में जहां एक ओर सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20% उत्पादन में कमी आती है, वहीं असिंचित क्षेत्रों में 50% से 100% हानि की संभावना रहती है। जुताई एवं अन्य शस्य क्रियाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग सीधे खेतों की उत्पादकता पर प्रभाव डालता है। जैसे सीड कम फर्टी डिल से बुवाई तथा पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रुपाई निश्चित रूप से अधिक उत्पादन लेने में तो सहायक सिद्ध हुए ही है, साथ ही साथ खेती में मानव श्रम की बचत से प्रति इकाई उत्पादन लागत में भी कमी आई है, जिससे किसानों को शुद्ध लाभ बढ़ जाता है। सिंचाई जल को उठाने के लिए पंप सेट तथा जुताई के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से फसलों को खरपतवार एवं कीटों तथा रोगों से फसलों को बचाने के लिए कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में कृषि रक्षा उपकरणों में बहुत ही लाभकारी भूमिका अदा की है। बहुफसली खेती का प्रचलन और सीमित जल से अधिक मितव्ययी एवं लाभकारी प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए स्प्रिंकलर सेट एवं टपक सिंचाई प्रणाली बहुत ही लाभकारी है। सिंचाई के साधनों के द्वारा सिंचन क्षमता के सृजन के फलस्वरूप एक वर्ष में एक से अधिक फसल लेनी होती है, इसलिए जब असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई साधनों का प्रयोग होने लगता है तो ज्वार और अरहर या बाजरा और अरहर या अरहर और उड़द, अरहर और मूंग या परती, राई अथवा अन्य फसलें लेने के स्थान पर धान और तोरिया, तोरिया के बाद गेहूं और गेहूं के बाद मक्का जैसी चार फसली फसल चक्र अपनाए जाने चाहिए और प्रयास यह करना चाहिए कि जो भी फसल बोई जाए उसकी अधिक उपज देने वाली एवं कम समय में तैयार होने वाली बाजार ग्राही प्रजातियों की बुवाई की जाए, जिससे जहां एक और वर्ष में 3 या 4 फसलें ली जा सकेंगी वहीं प्रत्येक फसल से अच्छी उपज प्राप्त होगी और उसके उत्पाद बाजार में बहुत आसानी से बिक जाएंगे। किसान भाई जो भी फसल लें उसके लिए नत्रजनित, फॉस्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का प्रयोग करें। उर्वरकों के प्रयोग में यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बारानी क्षेत्रों तथा दलहनी फसलों में उर्वरकों की एक ही बार में बेसल ड्रेसिंग करनी होगी, जबकि सिंचित क्षेत्रों में नत्रजनित उर्वरकों की आधी मात्रा फॉस्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग वेसल ड्रेसिंग में करना होगा। नत्रजन की शेष मात्रा का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें। इसी प्रकार से फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण परिलक्षित होने पर सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति हेतु संस्तुत रसायनों का प्रयोग किसान भाई समय के अंतर्गत करें। इस तरह से खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हमने आरंभ में 4 बातें बताई थी उन्हें हम पुनः किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4 बातें बहुत ही आवश्यक हैं। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उर्वरता में वृद्धि, खेती के लिए सिंचाई साधन एवं अन्य सुविधाओं का होना, क्षेत्रफल विशेष में एक निश्चित अवधि में फसलों का लिया जाना तथा शस्य क्रम एवं फसल सघनता, कृषि निवेशों का संस्तुत मात्रा में समय अंतर्गत सही विधि से प्रयोग। इस तरह से किसान भाई यदि इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने खेतों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी खेती की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय के विषय में कुंदन सिंह की वार्ता। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क

0: कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है।

0: और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news.

0: मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं खून चढ़ाने से पूर्व सावधानियों के विषय में डॉक्टर एच एल राजपूत की वार्ता।
1: आज हम बात करेंगे रक्त चढ़ाने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आखिर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जैसे एनीमिया, इन्फेक्शन या एक्सीडेंट इत्यादि में रक्त का शरीर से ज़्यादा निकल जाना या शरीर में रक्त का नहीं बनना, जैसे कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया या मलेरिया इत्यादि। मनुष्यों में चार प्रकार का रक्त ग्रुप पाया जाता है, जिसे हम ए, बी, ओ तथा ए बी ग्रुप कहते हैं। इसके साथ में एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं, उसकी वजह से आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, इस तरह से ब्लड ग्रुप 8 प्रकार का हो जाता है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। और सबसे बड़ी सावधानी शुरुआती ये है कि जिस ग्रुप के व्यक्ति को जिस ग्रुप की आवश्यकता है वही ग्रुप का उसमें चढ़ाया जा सकता है। जैसे ए पॉजिटिव ग्रुप का मरीज है तो उसमें ए पॉजिटिव का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है, ए नेगेटिव रक्त नहीं, क्योंकि उसमें एंटीजन होते हैं। उसी तरह से बी नेगेटिव ग्रुप है तो उसमें बी नेगेटिव ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। इसमें एक ग्रुप होता है ओ ग्रुप, जो कि इमरजेंसी केसेस में, सिर्फ इमरजेंसी केसेस में किसी भी ग्रुप वाले मरीज को चढ़ाया जा सकता है, जिसको कि हम यूनिवर्सल डोनर या सार्वजनिक दाता कहते हैं। दूसरा होता है ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट या सार्वजनिक ग्राही कहते हैं। इसमें इमरजेंसी केसेस में किसी भी ग्रुप का ए बी या ओ का ग्रुप ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ इमरजेंसी में ही संभव है, अन्यथा हमें जिस ग्रुप का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसी ग्रुप के उसमें हमें ब्लड चढ़ाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें डोनर में रखनी चाहिए। डोनर स्वस्थ होना चाहिए, 15 से 55 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, उसके कोई भी क्रॉनिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एचआईवी है, मलेरिया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है या दिल की बीमारी है। और ब्लड देने वाले व्यक्ति का वजन भी 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा स्वस्थ व्यक्ति ही डोनर हो सकता है। और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 6 महीने में रक्तदान कर सकता है। 4 हफ्ते में रक्तदान किए हुए रक्त की भरपाई हो जाती है। रक्तदान के पश्चात कोई शरीर में शारीरिक कमजोरी, जैसी कि जनमानस में भ्रांति है, नहीं होती है, बल्कि रक्तदान के पश्चात शरीर में खून बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। आम जन में 85% आरएच पॉजिटिव रक्त पाया जाता है, 15% आरएच नेगेटिव रक्त पाया जाता है। एक ग्रुप होता है ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब बड़ा ऑपरेशन हो जिसमें बहुत रक्त की आवश्यकता हो, उतने देने वाले डोनर नहीं हो, तो इसमें हम जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है उसका हम पहले से ही करीब 1.5 महीने 2 महीने पहले से ब्लड को निकाल लेते हैं और ब्लड बैंक में सुरक्षित रखते हैं, और ऑपरेशन के दरमियान उसी ब्लड को हम इस्तेमाल करते हैं। ये सुरक्षित और कारगर तरीका है, इसको हम ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा रक्तदान करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेरित करना चाहिए। रक्तदान में अगर ब्लड चढ़ाते समय किसी तरह की अगर कोई परेशानी है, जो शुरुआती लक्षण है, मरीज को बुखार हो सकता है, मरीज को कपकपी आ सकती है या मरीज को शॉक की तरफ जा रहा है, तो इन चीज़ों पे हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए और जहां ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है उस अस्पताल में या उस डॉक्टर से तुरंत हमें संपर्क करके इस पर ध्यान देना चाहिए।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी खून चढ़ाने से पूर्व सावधानियों के विषय में डॉक्टर एच एल राजपूत की वार्ता। मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सोमेश्वर में देश गान। मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का
1: भगवान से डरो, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
1: हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
0: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एसआईटी का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी

0: 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
1: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में SIT और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित SIT ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले

कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। और अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। श्रोताओं, डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य संवर्धन और विश्वविद्यालय परिसर को स्वच्छ और हरित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। जी हां श्रोताओं, परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति का गठन भी किया गया है। ये पहल विश्वविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये विद्यार्थियों और समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम बनेगा। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवनों, विभागों और छात्रावासों में प्लास्टिक की बोतलों, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके स्थान पर मिट्टी के कुल्लड़, कागज और पत्तों से बनी पत्तल और दोनों जूट या कपड़े के थैले और कांच एवं स्टील के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नए सत्र की शुरुआत में शिक्षकों, छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को प्लास्टिक मुक्त परिसर की शपथ भी दिलाई जाएगी और जागरूकता के लिए परिसर में बोर्ड और होर्डिंग भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ गीले और सूखे कचरे के पृथक निस्तारण, प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और नियमित स्वच्छता अभियानों की व्यवस्था भी की जाएगी। तो हमारी भी आपसे अपील है कि आप प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, इसके स्थान पर कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

शुदो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश तैराकी एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए आगरा मंडल की टीमों का ट्रायल्स 27 और 29 जून को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के तरण ताल पर किया जाएगा। 3 से 5 जुलाई तक लखनऊ में प्रस्तावित जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल्स 27 जून को दोपहर 3 बजे और मंडलीय ट्रायल्स 4:30 बजे से होंगी। प्रतियोगिता में 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2011 के बीच जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे।

वहीं 10 से 12 जुलाई तक वाराणसी में होने वाली सीनियर पुरुष और महिला तैराकी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल्स 29 जून को आयोजित किए जाएंगे और जिला स्तरीय ट्रायल्स दोपहर 3 बजे और मंडलीय ट्रायल्स 4:30 बजे से शुरू होंगे।

परीक्षार्थियों के लिए कुछ और सूचनाएं हैं। प्राथमिक से लेकर एडिट, माध्यमिक एडिट, उच्च और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अभियाचन पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्तियों का विवरण मिलना शुरू हो गया है। पहला एडिट महाविद्यालयों के प्राचार्यों के 111 पदों के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और एडिट माध्यमिक में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य को मिलाकर 25,000 से ज्यादा पदों की रिक्तियां ई अधियाचन पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर प्राचार्य पदों की रिक्तियां ऑनलाइन फीड कर दी हैं और प्रदेश में संचालित 330 एडिट महाविद्यालयों में 111 में प्राचार्य का पद रिक्त होने के कारण इस पर चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

साथियों, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रदेश के परिषदीय विद्यालय 25 जून से नियमित पठन पाठन के लिए खुलेंगे। वर्तमान शैक्षिक सत्र में स्कूल खोलने की औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर का आकलन कर उसकी जरूरत के अनुसार पढ़ाई कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी आयुक्त प्रयागराज के आबकारी सिपाही भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी है। अब इन पदों की संख्या 820 कर दी गई है। श्रोताओं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के एलटी ग्रेड पुरुष महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए कंप्यूटर विषय की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

और अब एक सूचना रेलवे से संबंधित। रेल मंत्रालय ने माल ढुलाई को सस्ता करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने लीन सीजन यानी कि कम मांग वाले समय की अधिसूचना जारी कर जुलाई, अगस्त और सितंबर में माल यातायात पर 15% बिजी सीजन चार्ज यानी कि BSC नहीं लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड के आदेशानुसार बंद डिपो वाली मालगाड़ी में परिवहन किए जाने वाले सभी प्रकार के सामान पर बिजी सीजन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। खुले डिब्बों में ढोए जाने वाले लोह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, आयरन और स्टील श्रेणी के अधिकतर सामान इस दायरे से बाहर रहेंगे। शुल्क में राहत से उद्यमियों और व्यापारियों को राहत मिलेगी। वहीं सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन सस्ता होने से सड़कों पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। कंटेनर ट्रैफिक, टैंक कंटेनरों में बल्क सीमेंट यानी कि खुला सीमेंट, नमक ट्रैफिक को भी बिजी सीजन चार्ज से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल और बांस की ढुलाई पर वर्तमान सर्कुलर के अनुसार ही बिजी सीजन चार्ज लागू किया जाएगा।

रेलवे ने लालकुआं वलसाड़ स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ये ट्रेन लालकुआं से 9 जुलाई तक हर गुरुवार, वलसाड़ से 10 जुलाई तक हर शुक्रवार को चलेगी। इसके साथ साथ रेलवे ने प्रयागराज दादर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 10 जुलाई तक प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार और 12 जुलाई तक दादर से प्रत्येक रविवार को संचालित होगी। ये ट्रेन प्रयागराज से ईदगाह स्टेशन होते हुए जाएगी।

इसके साथ साथ रेलवे ने मुंबई सेंट्रल काट गोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से बुधवार और काट गोदाम से गुरुवार को चलेगी। ये मथुरा जंक्शन होकर संचालित होगी। इसमें एक सेकेंड एसी, चार थर्ड एसी और सात स्लीपर और चार जनरल कोच लगे होंगे। कार्यक्रम आसपास में सूचनाएं यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। सीमा पुत्री रामेश्वर निवासी ग्राम नीलकंठपुर थाना औचा जनपद मैनपुरी से दिनांक 15 मई 2026 से लापता है। सीमा की उम्र 16 वर्ष, कद 4 फीट 1 इंच और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय सीमा ने नीला सूट और काली पजामी पहनी हुई थी। सीमा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना औचा मैनपुरी के पते पर सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार नीलम पुत्री जसकरण निवासी ग्राम भाऊपुर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी से दिनांक 26 अप्रैल सन 2026 से लापता है। नीलम की उम्र 21 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच और रंग कोरा है। नीलम के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना भाऊपुर मैनपुरी के पते पर सूचित करें।

मैनपुरी से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार नीतीश कुमार पुत्र भीकम सिंह निवासी गड़िया गणेशपुर थाना बरनाहाल मैनपुरी से दिनांक 22 मई सन 2026 से लापता है। नीतीश की उम्र 27 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, चेहरा गोल और रंग गेहूं है। गुमशुदगी के समय नीतीश ने पीली टी शर्ट ग्रे पैंट पहनी हुई थी। नीतीश के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना बरनाहल मैनपुरी के पते पर सूचित करें। और एक अन्य सूचना के अनुसार सुरेखा पुत्री राकेश कुमार निवासी उदयपुर परमकुटी थाना औचा मैनपुरी से दिनांक 22 मई सन 2026 से लापता है। सुरेखा की उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय सुरेखा ने नीला सूट पहना हुआ था। सुरेखा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना औचा मैनपुरी के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलीट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और ट्रिपल सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को 30 जून तक ईकेवाईसी करानी होगी। ईकेवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को अपात्र माना जा सकता है और ये सुविधा जनसेवा केंद्रों और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।

हाई स्कूल के बाद आईटीआई का नौकरी करने वाले युवा अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत ऐसे युवाओं को नौकरी के साथ साथ 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने का अवसर मिलेगा। अब तक बड़ी संख्या में छात्र हाईस्कूल के बाद आईटीआई कर रोजगार से जुड़ जाते थे, जिससे उनकी औपचारिक शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाती थी। अब यूपी सरकार के साथ एमओयू कर आईटीआई विद्यार्थियों का आंकड़ा निकालकर उनसे संपर्क कर संस्थान के माध्यम से 12वीं की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे उनके उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर रोजगार के अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे। इससे उनकी पदोन्नति होने में आसानी होगी और इस योजना का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके करियर विकास को गति देना है।

और अब मौसम संबंधी सूचना सुनिए। प्रदेश में गर्मी और उमस के बीच सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है। अभी चार दिन यानी कि आज से 27 जून तक लखनऊ और आसपास समेत ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। इस दौरान तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन 28 जून से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया गया है। श्रोताओं, दरअसल मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा अरब सागर से होते हुए मध्य भारत और बिहार के मोतिहारी क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तीन दिन बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। 28 जून को पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है, पर पूरे प्रदेश में एक साथ मानसूनी बारिश पहुंचने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा और जुलाई के पहले सप्ताह तक वर्षा का असर प्रदेश भर में दिख सकता है।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से

0: आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज

0: देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
0: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक

0: 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and

0: मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है, जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी, जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की, आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए, जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैन अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखाह तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है, जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की ये शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है, जब तिजारती शराकतदारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमरीका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरुद हैं। इस दौरान जनाब गौर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इकतसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इकतसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब अबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

ए.आर. रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे गुलजार की शब्द रचना। स्वर थे सोनू निगम और अलका याग्निक के, फिल्म थी फिजा।

साथियों आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। गीतकार है सईद कादरी, संगीतकार है अनु मलिक, फिल्म का नाम है जहर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है।

साथियों, आइए अब आपका सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। गीतकार है सईद कादरी, संगीतकार है अनु मलिक, फिल्म का नाम है कलयुग।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे गाए हैं अभिजीत और सुनिधि चौहान ने। गीतकार हैं सईद कादरी, संगीतकार हैं प्रीतम, फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
1: श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकोना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठन

0: द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकोना, पिरबितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान SDM संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर DJ बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
1: प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए, इसको सभी लोगों को अवगत कराएंगे तथा सबको विश्वास दिलाएंगे कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई है, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महापर्व का आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामाजिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भव्य शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
2: मुझे महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के भाव में जिसका परिवार दबाव बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 60 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, आज हर गरीब आदमी।
0: श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नापूर्णनगर के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत दत्तन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टालों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे।
3: श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
4: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है।

0: नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
1: अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए। जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि और नोटिस दे जहाँ जहाँ दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे।
0: पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदिगंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों जन कल्याणकारी योजनाओं उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागारी राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बिजली पेयजल आवास शौचालय स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गांव गरीब किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी अन्य जनप्रतिनिधिगण विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्यवाही में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के एटीएम कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत आपने सुना फिल्म मेरे हुजूर से, स्वर था मोहम्मद रफी का। हसरत जयपुरी की शब्द रचना को सुरों में ढाला था शंकर जयकिशन ने। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है दिल एक मंदिर, स्वर है लता मंगेशकर का, गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन।

शदा फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। गीतकार थे शकीर बदायनी, संगीतकार थे हेमंत कुमार। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है आराधना। स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है ST बर्मन ने।

साथी लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतमय जोशा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं राधे श्याम के गाए कुछ लोक भजन। आपके साथ संगत कलाकार हैं। हारमोनियम पर प्रस्तुति है कादिर खां की, ढोलक पर साथ देंगे परमानंद और साइड रिदम है राजकुमार पांडे का।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राधे श्याम के गाए कुछ लोक भजन।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राधे श्याम के गाए कुछ लोक भजन। आपके साथ संगत कलाकार थे, हारमोनियम पर प्रस्तुति थी कादिर खां की, ढोलक पर सादिया परमानंद ने और साइड रिदम था राजकुमार पांडे का। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे इंदिवर की शब्द रचना, स्वर थे अनुराधा पौड़वाल और सुरेश वाडेकर के, फिल्म थी प्रेम गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत है वारिस फिल्म से। स्वर है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह के, गीतकार है वर्मा मलिक, संगीतकार है उत्तम जगदीश।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र, प्रस्तुत किया जा रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सर सरिता।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना आरती मुखर्जी के स्वर में। गीतकार थे गुलजार, फिल्म थी मासूम। और अब लीजिए सुनिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से आशा भोसले को। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कहकशां फिल्म से आशा भोसले और भुपिंदर सिंह को। संगीतकार है मधु मुखर्जी।

आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, सच्ची शांति उस हृदय में जन्म लेती है जो प्रेम करता है, और गवाही वो होंठ देते हैं जो मेल मिलाप के शब्द बोलते हैं। ये उन आंखों में झलकती है जो दुनिया को करुणा और विवेक से देखती है, क्योंकि केवल सत्य और प्रेम की शक्ति ही सच्ची शक्ति है।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पंडित राजन साजन मिश्रा का राग अलहिया बिलावल में ख्याल गायन।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्रा से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग अलहिया बिलावल। और इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी सदफ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत के सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता सतीश शाह के बारे में। साथियों, सतीश शाह ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय, हास्य प्रतिभा और सहज व्यक्तित्व के माध्यम से लाखों दर्शकों के हृदय में विशेष स्थान बनाया। आप उन चुनिंदा अभिनेताओं में से थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि किसी कलाकार की महानता केवल मुख्य भूमिका निभाने में नहीं बल्कि अपने पात्र को जीवंत बनाने में होती है। साथियों, आपने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वर्ष 1978 में अरविंद देसाई की अजब दास्तां फिल्म से की। इसके बाद आपने बोंगा फिल्म में एक लुटेरे की भूमिका निभाई। हालांकि इन शुरुआती फिल्मों ने आपको सफलता नहीं दिलाई, लेकिन आपने हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाया। आपके अभिनय में सहजता और स्वाभाविकता थी जिसने धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 1981 में मुजफ्फर अली ने

उमराव जान फिल्म के लिए सतीश शाह को साइन किया। इस फिल्म में आपने दरोगा दिलावर के रूप में अपना किरदार निभाया और यहीं से आपको फिल्मी पर्दे पर पहचान मिलना शुरू हो गई। तो क्यों ना साथियों, हम भी सुने इस पहचान दिलाने वाली फिल्म उमराव जान का ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चरित्र अभिनेता सतीश शाह के बारे में। साथियों, आपने उमराव जान फिल्म के बाद अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है फिल्म में काम किया। इसके बाद वर्ष 1982 में आपने शक्ति फिल्म में रवि का किरदार निभाया। साथियों, आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ वर्ष 1983 में आई प्रसिद्ध फिल्म जाने भी दो यारों से आया। इस फिल्म में आपने कमिश्नर डी मेलो का किरदार निभाया। ये भूमिका भले ही मुख्य नायक की नहीं थी, लेकिन आपके हास्यपूर्ण अभिनय ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ व्यंग फिल्मों में गिनी जाती है और आपका अभिनय आज भी याद किया जाता है। साथियों, इसके बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने वर्ष 1986 में पीछा करो, मेरा बलवान, अमृत, अनोखा रिश्ता जैसी कई फिल्मों में काम किया। वर्ष 1987 में गैमिट जम्मट, अपने अपने, कलयुग और रामायण, जान हथेली पे, परम धर्म जैसी कई फिल्मों में आपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया। इसके बाद वर्ष 1988 में आपने मारधाड़, वीराना, घर घर की कहानी, हीरो हीरालाल जैसी फिल्मों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। साथियों, सतीश शाह के बारे में अभी हम आपसे और भी तमाम बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत के सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता सतीश शाह के बारे में। साथियों, सतीश शाह के लिए वर्ष 1989 बड़ा ही यादगार वर्ष रहा। इस वर्ष आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 20 फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाई। ये फिल्में हैं अंजाम, आग और शोला, बड़े घर की बेटी, पुरानी हवेली, तेरे बिना क्या जीना, हिसाब खून का, इत्यादि कई फिल्में शामिल हैं। वर्ष 1990 व 91 में आपके द्वारा अभिनीत मुख्य फिल्में हैं मेरा पति सिर्फ मेरा है, जंगल प्रेम, जंगल की रानी, बेनाम बादशाह, पत्थर के इंसान, धर्म संकट जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में आपने अपनी यादगार भूमिकाएं निभाई। इस तरह आप हर बार एक नई भूमिका के रूप में फिल्मों में नजर आते। आप कभी पुलिस निरीक्षक, पिता, चिकित्सक, संपादक और पुलिस इंस्पेक्टर जैसी भूमिकाओं को निभाते हुए दर्शकों का सदैव मनोरंजन करते। इसी कड़ी में वर्ष 1994 में आई हम आपके हैं कौन फिल्म है। इस फिल्म में आपने एक चिकित्सक की भूमिका निभाई जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तो साथियों, आइए हम भी आपको सुनवाते हैं इस जीवंत किरदार अभिनीत फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता सतीश शाह के बारे में। साथियों, सतीश शाह एक बहुमुखी कलाकार थे। आप हास्य भूमिकाओं के साथ साथ गंभीर और भावनात्मक भूमिकाएं भी उतनी ही कुशलता से निभाते थे। आपकी कॉमिक टाइमिंग अद्भुत थी। लगभग 5 दशकों तक आपने दर्शकों का मनोरंजन किया और अनेक यादगार पात्रों को जीवंत बनाया। वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक आपने कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें प्रमुख फिल्में हैं अकेले हम, अकेले तुम, साजन चले ससुराल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जुड़वा, हीरो नंबर वन, घरवाली बाहर वाली, तिरछी टोपी वाले, अनाड़ी नंबर वन, हम साथ साथ हैं, कहो ना प्यार है, हर दिल जो प्यार करेगा फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में आपने अपनी भूमिका से दर्शकों का दिल जीता। साथियों, आपकी अभिनय कला इतनी स्वाभाविक थी कि दर्शक उनके पात्रों से स्वयं को जोड़ लेते थे। यही कारण है कि आप भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे लोकप्रिय चरित्र अभिनेताओं में गिने जाते हैं। साथियों, सतीश शाह के बारे में हम और भी इसी तरह की तमाम जानकारियां आपको देंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चरित्र अभिनेता सतीश शाह के बारे में। साथियों, सतीश शाह ने अपने करियर के 5वें दशक में भी कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय किया। आपने कल हो ना हो, मैं हूं ना, फना, ओम शांति ओम, मुझसे शादी करोगे, लव के चक्कर में, भूतनाथ, बंदा ये बिंदास है, एक नई प्रेम कहानी जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया। साथियों, फिल्म मैं हूं ना में आपका प्रोफेसर सासाई का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया। वहीं कल हो ना हो में आपकी उपस्थिति ने फिल्म में हास्य का विशेष रंग भरा। आपने हर भूमिका को अपनी विशिष्ट शैली से निभाया और छोटे से छोटा पात्र भी दर्शकों के मन में स्थायी छाप छोड़ गया। आपने अपने जीवन की अंतिम फिल्म हमशक्ल में वर्ष 2014 में काम किया। इसके बाद आपने फिल्मों से संन्यास ले लिया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2025 को अभिनय के इस दिग्गज सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस सितारे ने दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन आप आज भी हम सभी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। आपकी कला, व्यक्तित्व, अभिनय शैली व संवाद संयोजन हमेशा स्मरणीय रहेगा। साथियों, आज आपके जन्मदिवस की पूर्व तिथि है। आपके पावन जन्मदिवस के अवसर पर हम आकाशवाणी आगरा की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और साथ ही समर्पित करते हैं ये गीत।

श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और अब समय है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी सदफ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य पर महिलाएं विषय पर। साथियों, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 24 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित ये दिवस वैश्विक स्तर पर कूटनीति और राजनयिक भूमिकाओं में महिलाओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। 21वीं सदी में वैश्विक कूटनीति का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज विश्व केवल राजनीतिक और आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता जैसे मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के केंद्र में हैं। साथियों, इस बदलते वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। महिलाएं अब केवल समाज और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण, शांति स्थापना, संघर्ष समाधान तथा वैश्विक नेतृत्व में भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और हर मैदान फतह कर रही हैं।

श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य पर महिलाएं विषय पर। साथियों, महिलाएं आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता व दक्षता का परिचय दे रही हैं। राजनीति, प्रशासन तथा कूटनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। इसी महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी के रूप में मनाने

की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना तथा उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथियों, लंबे समय तक कूटनीति जो है पुरुष प्रधान का क्षेत्र था। राजदूत, विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार जैसे पदों पर पुरुषों का वर्चस्व रहा, किंतु शिक्षा के प्रसार, महिला अधिकार आंदोलनों और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के साथ महिलाओं ने इस क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। आज विश्व के अनेक देशों में महिलाएं विदेश मंत्री, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख के रूप में कार्य कर रही हैं। साथियों, इस विषय पर अभी हम आपसे और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य पर महिलाएं विषय पर। साथियों, महिलाओं ने वैश्विक कूटनीति को अधिक मानवीय, संवेदनशील और समावेशी बनाया है। उन्होंने शांति वार्ताओं, मानवाधिकार संरक्षण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता से उठाया है। महिलाओं की नेतृत्व क्षमता ने ये सिद्ध किया है कि कूटनीति केवल शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं है, बल्कि संवाद, सहयोग और सह अस्तित्व की

प्रक्रिया भी है। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं ने शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी भागीदारी से शांति समझौते अधिक स्थायी और प्रभावी सिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि आज संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कूटनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं।

श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य पर महिलाएं विषय पर। साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की कूटनीतिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया है। वर्ष 2000 में पारित सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव महिला शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। इस प्रस्ताव ने संघर्षों की रोकथाम, शांति स्थापना और पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया, जिसका परिणाम

ये हुआ कि विश्व भर में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहन मिला है। भारत में भी महिलाओं ने कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भारतीय महिला राजनयिकों ने विभिन्न देशों में भारत का प्रभावी प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाया है। आज भारतीय महिलाएं वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। तो सुनते हैं महिलाओं की इस आवाज को इस गीत के माध्यम से।

शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्ति

0: जो सिद्ध पे तो नदी का रुख भी मोड़ेगी, जो ले लिया है एक बार प्रण वो करके छोड़ेगी, लाख उसके इम्तिहान ले ले कोई भी डगर
1: न दर्द की उसे।

श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य पर महिलाएं विषय पर। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। साथियों, वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी विश्व के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और संवेदनशील दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। शांति, सहयोग और सतत विकास पर आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं को कूटनीति के क्षेत्र में समान अवसर और नेतृत्व प्रदान किया जाए, जिससे एक अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सके।

श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य पर महिलाएं विषय पर। साथियों, जब महिलाएं कूटनीति की मेज पर बैठती हैं, तब संवाद अधिक समावेशी, निर्णय अधिक संवेदनशील और शांति अधिक स्थायी बनती है। महिला कूटनीतिज्ञ केवल देशों के बीच संबंध नहीं बनाती, बल्कि विश्वास, सहयोग और शांति के पुल भी निर्मित करती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस हमें याद दिलाता है कि शांति की हर स्थायी पहल में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न करने की अपने रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है, लेकिन पुरातत्व और इतिहास

की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन

0: अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's

0: विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मो जगती तल दासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में

0: सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूँ।
2: तो फादर, मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ फादर बुलके।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूँ।
5: जी
0: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
3: देखिए,

0: राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
1: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम

0: कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, और इसी के साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम NCERT यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए सबसे पहले सुनते हैं लव आजकल फिल्म का ये गीत, राहत फतेह अली खान की आवाज में। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत रचना है प्रीतम की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में लव आजकल फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं बेनी दयाल और शेफाली की, संगीत रचना है प्रीतम की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बेनी दयाल और शेफाली की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म कॉकटेल से। आवाजें हैं नीरज श्रीधर, कविता सेठ की, शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत रचना है प्रीतम की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कॉकटेल फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं आशीष कौर, तनिष्क बागची और राहत फतेह अली खान की आवाजों में फिल्म सिम्बा का ये गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सिम्बा फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं वेद शर्मा की आवाज में, मलंग फिल्म से।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे वेद शर्मा की आवाज में फिल्म मलंग का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल की आवाजों में।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ये गीत। शब्द रचना थी इरशाद कामिल की, संगीत रचना थी विशाल शेखर की। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया

0: producer since 2018. The minister said the crude steel production has grown at nearly 8% annually since financial year 2021-22, while finished steel consumption has risen by approximately 13%, driven by strong domestic demand. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra in the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab. In the FIFA World Cup 2026, Colombia have qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in the group game match. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन और खसूसी तहकीकाती टीम SIT ने कल मुश्तरका तौर पर लखनऊ के अलीगंज आतिश जदगी के जायवकू का मुआयना किया। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SIT ने KGMU का भी दौरा किया और जख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामानिगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने कहा,
2: हमें कुछ वाकई साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
3: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। इधर लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वज़ीर-ए-आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाकये में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इकदाम का मिशन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकाती टीम ने कल लखनऊ में जायवकू का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा और दीगर अजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में साफियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा,
4: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का अहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की

0: सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, ITA ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौजूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौके की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौके के बारे में आगाह किया जाएगा। UPTET 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अज़ला के 955 मराकज़ पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। और महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फाल निज़ाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही मेरी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम बात करेंगे घर संसार की, जहां हर भावना, हर सोच और हर रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा होता है। कभी शांति की बात होती है तो कभी मन के संघर्ष की, कभी इतिहास हमें प्रेरणा देता है तो कभी वर्तमान हमें चेतावनी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, आज की चर्चा विश्व शांति की दूत महिला कूटनीतिज्ञ के साथ। बहनों, जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर बड़े बड़े युद्ध, समझौते और राजनीतिक फैसले आते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कूटनीति की, और आज के समय में इसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। बहनों, भारत की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे वैश्विक मंच पर शांति की दूत बनकर उभर रही हैं। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हमें विजयालक्ष्मी पंडित जैसी महान महिला कूटनीतिज्ञ दिखाई देती हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनकर भारत की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उस समय महिलाओं की अपनी पहचान बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने न केवल उस चुनौती को स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में बदल दिया। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज रुचिरा कम्बोज संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शांति, सुरक्षा और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश की सोच को मजबूती से दुनिया के सामने रख रही हैं। फर्क सिर्फ समय का है, तब महिलाएं अपनी जगह बना रही थीं और आज वही महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। बहनों, महिला कूटनीतिज्ञों की सबसे बड़ी ताकत उनकी संवेदनशीलता और संवाद की क्षमता होती है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें सुषमा स्वराज के रूप में देखने को मिला, जिन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए कूटनीति को सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा। उन्होंने विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों की मदद करके साबित किया कि कूटनीति सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि इंसानियत भी होती है। इसी तरह आज के समय में निर्मला सीतारमण, जो आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्होंने भी ये दिखाया कि एक महिला ना सिर्फ संवेदनशील हो सकती है बल्कि उतनी ही मजबूत और निर्णायक भी हो सकती है।

बहनों, अगर हम तुलना करें तो पारंपरिक कूटनीति अक्सर शक्ति और रणनीति पर आधारित रही है, जबकि महिला कूटनीति उसमें संतुलन, संवाद और संवेदनशीलता जोड़ती है। जहाँ टकराव होता है वहाँ महिलाएं समाधान खोजती हैं, जहाँ मतभेद होते हैं वहाँ वे संवाद का रास्ता चुनती हैं। शायद यही कारण है कि महिलाएं स्वभाव से ही शांति की दूत बन जाती हैं, क्योंकि जिस तरह वे घर में रिश्तों को जोड़ती हैं उसी तरह वे दुनिया के देशों के बीच भी संतुलन और समझ का पुल बनाती हैं। इसलिए आज की भारतीय महिला कूटनीतिज्ञ साबित कर रही है कि शांति केवल समझौतों से नहीं आती बल्कि समझ, धैर्य और संवेदनशीलता से भी आती है, और यही गुण उन्हें विश्व शांति की सच्ची दूत बनाते हैं। तो ये थी बातें हमारी भारतीय महिला कूटनीतिज्ञों की। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

मैनो, अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश पर। मैनो, जब हम मेरी माटी मेरा देश की बात करते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हमारी पहचान होती है, हमारी जड़ों की खुशबू होती है और उस मिट्टी के लिए समर्पण होता है जिसने हमें जन्म दिया। और जब इस भावना की बात आती है तो इतिहास के पन्नों से एक नाम बड़े गर्व से सामने आता है और वो नाम है रानी दुर्गावती। जी हाँ बहनों, आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती पर। रानी दुर्गावती सिर्फ एक रानी नहीं थी बल्कि साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की जीती जागती मिसाल थी। जिस समय महिलाओं को सीमाओं में बांधकर देखा जाता था, उस समय उन्होंने तलवार उठाकर ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि देश की रक्षा का अधिकार और कर्तव्य दोनों ही के पास है, पुरुष के पास भी और महिलाओं के पास भी। उन्होंने गोंडवाना की धरती पर राज किया, लेकिन उनके लिए राज करना सिर्फ शासन नहीं था बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म था। जब मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, तब उन्होंने हार मानने की बजाय युद्ध का रास्ता चुना। यहाँ तुलना बहुत साफ दिखाई देती है बहनों। जहाँ आज हम छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, वहीं रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा। वो जानती थी कि परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया क्योंकि उनके लिए सम्मान और स्वतंत्रता जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थे। आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। जहां आज हम मेरा देश कहकर गर्व महसूस करते हैं, वहीं रानी दुर्गावती ने मेरी माटी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर हम तुलना करें तो आज देशभक्ति अक्सर भावनाओं तक सीमित रह जाती है, शब्दों तक सीमित रह जाती है, लेकिन उस समय ये त्याग और बलिदान का रूप ले लेती थी। रानी दुर्गावती हमें सिखाती हैं बहनों कि चाहे समय कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर दिल में अपने देश के लिए प्रेम और सम्मान है तो एक महिला भी इतिहास बदल सकती है। और शायद यही मेरी माटी मेरा देश का असली अर्थ है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें, उनका सम्मान करें और ज़रूरत पड़े तो उनके लिए खड़े भी हों। ये थी बात मेरी माटी मेरा देश में। आज सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ और वो विषय है घरेलू काम में पति का सहयोग। हमारे साथ हैं शिवी जी, जो कि हाल ही में मैटरनिटी लीव के बाद अपनी नौकरी फिर से शुरू कर चुकी हैं और अब एक 5 महीने की बच्ची की माँ भी हैं। तो मैं आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: शिवांगी, धन्यवाद।
0: अच्छा, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे बस यही है कि आपका दिन अब किस तरह से शुरू होता है, खासकर जब आपकी बच्ची इतनी छोटी है और आप नौकरी पर भी वापस आ गई हैं।
1: सच कहूँ तो शुरुआत बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है
0: जी।
1: सुबह बच्ची की देखभाल करना, उसे दूध पिलाना, नहलाना और खुद को भी तैयार करना
0: जी,
1: ये सब इतना ज्यादा जल्दी करना पड़ता है। लेकिन मेरे पति इसमें काफी सहयोग करते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं
0: जी।
1: वे मेरी मदद करते हैं, जैसे कि बच्ची को संभालना और सुबह के कामों में हाथ बटा देते हैं। इससे मैं टाइम पे ऑफिस भी पहुंच जाती हूँ और स्ट्रेस भी कम होता है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पति आपकी मदद कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चों के साथ काम करने वाली महिलाओं के लिए पति का सहयोग और भी जरूरी है?
1: बिल्कुल शिवांगी, छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पति का सहयोग न सिर्फ काम को आसान बनाता है बल्कि एक मेंटल सपोर्ट बहुत देता है।
0: बिल्कुल।
1: जब आपके हस्बैंड आपकी बच्ची की देखभाल करते हैं या घर के कामों में आपकी मदद करते हैं, तो महिला अपने करियर और हेल्थ दोनों पे फोकस कर सकती है। इससे घर और ऑफिस दोनों में बैलेंस

0: बना रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब आपके पति आपकी मदद करते हैं तो बहुत हद तक एक महिला अपने स्वास्थ्य पर और अपने करियर पर ध्यान दे पाती है। आपके अनुसार पति किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासकर ऐसे समय में?
0: सहयोग सिर्फ काम में ही नहीं होना चाहिए बल्कि भावनात्मक रूप से भी सपोर्ट होना चाहिए। आप अगर ऐसे टाइम में अपनी वाइफ को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बच्चे की देखभाल करें साथ में, रसोई में भी उनकी छोटी मदद कर दें, कपड़े धोने, घर की सफाई करने में मदद कर दें
1: जी,
0: और उसके साथ ही अगर आप प्रोत्साहन दें, जैसे एक छोटा सा सेंटेंस, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ये भी आप कह देते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत देता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हमारे पति हमसे ये कह देते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो तो ये कहीं ना कहीं हमें हिम्मत से भर देता है। आप हमारी श्रोता बहनों को क्या संदेश देंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि घर के काम सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं है। पति का सहयोग न सिर्फ काम को आसान बनाता है बल्कि परिवार में भी खुशहाली लाता है। छोटे कदम जैसे सुबह की तैयारी में मदद कर दें, बच्चे के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा दें, महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा फर्क डालता है। परिवार में यह समझ अगर बढ़ जाए तो समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर पति और परिवार ये समझ जाएं कि हम अपनी पत्नी की मदद कर दें या हम अपनी बहू की मदद कर दें तो कहीं ना कहीं परिवार में भी खुशहाली आएगी और समाज में भी एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा ही आएगा।
2: तो बहनों, ये तो थी बात कुछ तुम कहो कुछ हम की। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी है जो कि जिसके लिए उसकी अपनी पहचान सबसे ऊपर है और जो औरतों को अपने बराबर का नहीं समझता, उन्हें आदमियों से कमतर आंकता है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो खुद को सबसे ऊपर समझता हो, जिसकी नज़र में औरत सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एक बोझ थी, बराबरी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी हर किसी को एक मौका ज़रूर देती है, एक ऐसा पल जब उसे अपनी सोच का आईना दिखता है और वही पल होता है एहसास का। तो आइए सुनते हैं ये कहानी एहसास। कहानीकार हैं नम्रता सिंघल।
3: सुरेश विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। उसके मन में महिलाओं के प्रति कोई इज्जत नहीं थी, इसलिए वह अपनी पत्नी की भी इज्जत नहीं करता था। हालांकि उसके इस व्यवहार पर उसकी माँ उसको बहुत समझाती, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसके पहली संतान होने वाली थी तब वह चाहता था कि वह पुत्र ही हो, लेकिन यह किसी के हाथ की बात तो है नहीं। कुछ समय बाद उसके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया। ये बात सुरेश को अच्छी नहीं लगी। पहले से ही बेरुखा स्वभाव और भी बेरुखी में बदल गया। उसने अपनी पुत्री की तरफ देखा तक नहीं। सुरेश की माँ उसके इस व्यवहार पर हमेशा उसे टोकती रहती, लेकिन उसमें कोई बदलाव ना आता। उसकी पत्नी भी हमेशा बहुत दुखी रहती क्योंकि उसकी पुत्री को पिता का प्यार कभी भी नहीं मिल पाता। कुछ वर्षों के बाद उसको पुत्र प्राप्ति भी हो गई। पुत्र के जन्म पर वह इतना खुश हुआ कि अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर डाला। वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। उसका ऐसा व्यवहार देखकर उसकी माँ व पत्नी जब ऐतराज करती तो वह उन्हें बुरा भला कहकर चुप करा देता। उसके इस व्यवहार से उसकी पत्नी कभी खुश नहीं रही और बीमार रहने लगी और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। अब रीवा को प्यार करने वाला केवल उसकी दादी ही थी। वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसके मन में अपने पिता के प्रति खौफ भी पैदा हो रहा था, क्योंकि वह उससे कभी ठीक से बात नहीं करते। जब कभी वह उसके सामने पड़ जाती तो उसे बिना बात झड़क देते। वह दादी के पास जाकर रोने लगती, जबकि बेटे के प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उसको पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया और उसकी हर जरूरत पूरी करते, जिसकी वजह से वह बिगड़ता ही जा रहा था, जो उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। दूसरी तरफ बेटी को वह पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दादी ने उसका किसी तरह सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। वह हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। जब उसकी स्कूलिंग समाप्त हो गई तब उसने दादी से आगे पढ़ने की बात की। दादी ने सुरेश से कहा तो उसने कहा, मुझे उसे और नहीं पढ़ाना, बस मैं उसकी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ।

रीवा अभी छोटी थी, वह शादी करना नहीं चाहती थी, वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन अपने पिता से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह दादी के पास जाकर रोने लगती, तब दादी भी क्या करती, वह उसे ही समझा कर चुप करा देती। फिर सुरेश ने रीवा के लिए एक ऐसा लड़का देखा जो अनाथ था और छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था। दादी ने इसका विरोध किया तो उसने कहा, मैं दहेज नहीं दे सकता, इसलिए कुछ लोगों को बुलाकर इसकी शादी कर दूंगा और इस बारे में मुझे किसी से और कोई बात नहीं करनी है। रीवा दादी से शादी की मना करती रही, लेकिन सुरेश ने उसकी शादी कर दी। मानस अनाथ तो था, लेकिन बहुत सुलझे हुए विचारों का था। उसने रीवा को दुखी देखा तो उसके मन की बात जाननी चाहिए। रीवा से बात करने के बाद उसने फैसला किया कि तुम्हें जो पढ़ाई करनी है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं खुद भी अपनी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखूंगा, जिससे मैं भी सरकारी नौकरी पा सकूं। उसने रीवा की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, वह उसका बहुत ध्यान रखता, दादी से मिलवाने भी ले जाता और कहता, मेरे परिवार के रूप में अब सिर्फ तुम ही हो, हमें समझदारी से अपने जीवन को चलाना है। रीवा भी बहुत मेहनत कर रही थी और मानस का पूरा पूरा साथ दे रही थी। दोनों की कोशिशें रंग लाईं और दोनों को ही पढ़ाई करने के पश्चात अच्छी नौकरी भी मिल गई। दूसरी तरफ रीवा का भाई भरत बिल्कुल बिगड़ चुका था, सभी बुरी लतें उसे लग चुकी थीं। क्लास में फेल हो जाता और पिता से झूठ बोल देता, पैसे पानी की तरह बहाता, लेकिन उसका पिता कभी उससे सवाल तक नहीं करता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए सिंगापुर जाना है, वहाँ पढ़ने से मुझे वहीं पर अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। तो उसके पिता ने कहा कि उसका खर्चा तो बहुत आएगा, इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन भरत ने कहा कि कोई बात नहीं, ये घर तो है, आप इसे बेचकर मेरे जाने का इंतजाम कर दो। दादी ने सुना तो उसका विरोध किया, तो उसने कहा कि थोड़े समय की तो बात है, मैं आप दोनों को भी सिंगापुर बुला लूंगा, फिर सब एक साथ रहेंगे। जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो घर का क्या होगा। बेटे की जिद पर उसने घर बेचकर उसे सिंगापुर जाने का इंतजाम कर दिया। सिंगापुर जाने के पश्चात कुछ दिन तो उसके फोन आए, लेकिन बाद में उसकी कोई खबर नहीं रहती। जब कभी सुरेश उसे फोन करता तो मिलता ही नहीं था। एक दिन भरत ने सुरेश को फोन करके कहा, मैं आपको यहाँ नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ उसमें मेरा खर्चा ही मुश्किल से चलता है और मैंने अब यहीं की लड़की से शादी भी कर ली है, इसलिए आगे से मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करना। यह सुनकर सुरेश को बहुत धक्का लगा, उसके तो पैरों की जमीन ही खिसक गई। सब कुछ खत्म हो गया था, मकान भी गया, बेटा भी गया और जो कुछ इसके पास था वह भी सब कुछ खत्म हो गया था। भरत के धोखे की बात जब दादी ने सुनी तो वह सदमे में आ गई और बीमार रहने लगी। सुरेश के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, वह क्या करता। थोड़े ही दिनों के बाद दादी की भी मृत्यु हो गई। अब सुरेश बिल्कुल अकेला रह गया, उसके जीने का मकसद ही खत्म हो चुका था, किराए के एक कमरे में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसे भी बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय पश्चात रीवा को जब यह पता चला कि दादी चल बसी हैं और भरत सिंगापुर चला गया है, तो वह अपने पिता से मिलने आई। जब उसने अपने पिता की दुर्दशा देखी तो बहुत दुखी हो गई और बोली, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी। पिता की आंखें नम हो गईं। उसको बेटी के प्रति अपना दुर्व्यवहार याद आने लगा। वह माफी मांगकर कहने लगा, मैं किस मुंह से तेरे घर जाऊंगा, मैंने तुझसे कभी ठीक से बात नहीं की, सिर्फ नफरत की, तेरी कभी एक नहीं सुनी, तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी कर दी। तूने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है और जिस बेटे पर मैंने सब कुछ नछावर कर दिया उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने कभी तेरी माँ की इज्जत नहीं की, ना अपनी माँ की कोई बात मानी, उसी का नतीजा है कि आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। रीवा ने कहा, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, अब आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेंगे, मैं आपकी देखभाल करूंगी। रीवा के साथ साथ मानस ने भी कहा कि आप हमारे पिता हैं, हम आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। सुरेश की आंखों में पछतावे के आंसू थे, वह उनसे मना न कर सका और उनके साथ उनके

0: घर चला गया। तब उसे एहसास हुआ कि बेटा साथ छोड़ देता है, लेकिन बेटियां पराए घर जाकर भी कभी पराई नहीं होती। उसने रावी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। ये आंसू पश्चाताप और स्नेह के आंसू थे। रावी की आंखें भी नम थी। आज पहली बार उसके पिता ने उसको इसने से गले लगाया था। आज वाकई उसे अपने पिता मिल गए थे, जो कभी उसके हुए ही नहीं थे। मानस भी आज अपने आप को सनाथ महसूस कर रहा था।
1: बहनों, कभी कभी इंसान इतना घमंड में होता है कि उसे सामने वाले की अहमियत ही नजर नहीं आती, और जब आती है तो सिर्फ पछतावा बसता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही सोच की थी। तो जब उन्हें इसका एहसास हुआ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही एक पिता के लिए समान होने चाहिए, दोनों को ही बराबरी के हक मिलने चाहिए, दोनों ही अपने अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं अगर उन्हें उनके हिस्से का आसमान दिया जाए। कहते हैं कभी कभी एहसास होना ही बहुत बड़ी बात होती है, आपको इस चीज़ का पछतावा होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थी कहानी एहसास। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। मुझे कुछ कहना है, जी हाँ, मुझे कुछ कहना है बहनों। उम्मीदें कम, खुशियाँ ज़्यादा, ये मुझे कहना है। बहनों, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी खुशियों का रास्ता मुश्किल बना लेते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उम्मीदें। हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो हमें तकलीफ होने लगती है। उम्मीद कि कोई हमारे लिए वैसा ही करे जैसा हम सोचते हैं, उम्मीद कि कोई हमें उतना समझे जितना हम चाहते हैं या जितना हम उन्हें समझते हैं, उम्मीद कि कोई हमें कभी दुख ना दे, लेकिन क्या ये सब संभव है? शायद नहीं। यहीं पर जिंदगी हमें एक बहुत छोटी लेकिन गहरी बात सिखाती है, ये कि उम्मीदें जितनी कम होंगी खुशियाँ उतनी ही ज़्यादा होंगी। अगर हम तुलना करें बहनों, तो ज़्यादा उम्मीदें हमें अंदर से कमज़ोर बनाती हैं और कम उम्मीदें हमें मजबूत और संतुलित बनाती हैं। बहनों, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद मतलब बार बार निराशा, और कम उम्मीद मतलब हर छोटी बात में खुशी। तो जब हम दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, तो हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, और वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तों से उम्मीद ही छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उम्मीदों को बोझ ना बनने दें। बहनों, कभी कभी बिना किसी उम्मीद के किया गया छोटा सा प्यार, छोटी सी मदद या एक सच्ची मुस्कान, वही हमें सबसे ज़्यादा सुकून देती है। क्योंकि सच्चाई यही है कि खुशियाँ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर अपनी उम्मीदों के बोझ में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज बस मुझे कुछ कहना है तो सिर्फ इतना ही कि उम्मीदें थोड़ी कम कर दीजिए, ज़िंदगी खुद ब खुद थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। ये थी बात मुझे कुछ कहना में है। मैं आज फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: तो बहनों, अब करते हैं बात पते की। आज के समय की एक ऐसी समस्या की जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर किसी के अंदर चल रही होती है, और वो है ओवरथिंकिंग। तो आज बात पते की ओवरथिंकिंग से ज़रा बच के पर। हमारी ज़िंदगी पहले जितनी मुश्किल नहीं हुई है बहनों, लेकिन हमारी सोच ज़रूर ज़्यादा उलझ गई है। पहले लोग समस्याओं से लड़ते थे, और आज हम सभी अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं। छोटी सी बात हो या कोई फैसला, हम उसे इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो समस्या से ज़्यादा बोझ बन जाती है। अगर कोई जवाब देर से दे तो हम सोचते ही रहते हैं कि अरे कुछ गलत तो नहीं हो गया। अगर कोई बात थोड़ी सी अलग हो जाए तो हम उसे बार बार अपने दिमाग में घुमाते ही रहते हैं। यही फ़र्क है बहनों, पहले परिस्थितियाँ हमें परेशान करती थीं, और आज हमारी अपनी सोच ही हमें परेशान कर देती है। बहनों, ये ओवरथिंकिंग ना धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, हमारे फैसलों को कमज़ोर बनाती है, और सबसे

बड़ी बात, ये हमारी खुशियों को चुपचाप छीन लेती है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम हर चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादा सोचने से हम सिर्फ खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तुलना करें तो सोचने और ओवर थिंकिंग में उतना ही फ़र्क है जितना दवा और जहर में होता है। तो बहनों, सही मात्रा में सोच हमें समझदार बनाती है और ज़रूरत से ज़्यादा सोच हमें परेशान कर देती है। तो ये थी बात आज की पते की। फिलहाल अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाजों में गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाजों में गजलें। आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाजों में गजलें, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के

0: अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
0: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को

0: पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ITIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर

0: ने स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी गिरजा देवी से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग भैरवी।

श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी गिरजा देवी से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग भैरवी। इसी के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:45 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं फिल्म हमराज का ये गीत। महेंद्र कपूर की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है रवि शंकर ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म आँखें से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है रवि शंकर ने।

0: रात कभी कभी।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंखें का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म वो कौन थी का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। रजा मेहंदी अली खान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे वो कौन थी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। और इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों पर आधारित भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है नदीम श्रवण की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की मधुर आवाज में राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत। शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है जतिन ललित की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की मधुर आवाजों में फिल्म कहो ना प्यार है से, और संगीत रचना है सावन कुमार की, शब्द रचना है राकेश रोशन की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं तेरे नाम फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक उदित नारायण की और संगीत रचना है हिमेश रेशमिया की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों में फिल्म तेरे नाम का ये गीत। और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है संदेश शांडिल्य ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत, और शब्द रचना थी समीर की, संगीत रचना थी संदेश शांडिल्य की। इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो

की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहरकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजने को हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय

0: पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SMKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदिन शिलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का।

अब एक नजर आज की सभा के शेष कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आप सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें चर्चा रहेगी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा। वार्ता में सुनिएगा समावेशी कूटनीति में महिला शक्ति की बढ़ती भूमिका। वार्ताकार होंगी हिवा जाफरी। आइए जाने सेगमेंट में सुनिएगा ऑर्बिट्रॉज फंड। शाम 6:00 ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। इसमें चर्चा रहेगी फसल चक्र की उपयोगिता पर। वार्ता में सुनिएगा पशुओं का टीकाकरण कब और कैसे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरीश चंद्र। साथ ही होगा मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का

शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनिएगा चर्चा, महिलाओं की प्रशासन में बढ़ती भूमिका। साथ ही होगा मनोज कुमार का काव्य पाठ। इसके साथ ही आपका मनोरंजन कराया जाएगा फिल्म संगीत से। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे वार्ता, महिलाओं को भी मिले बराबरी का हक। वार्ताकार होंगी शादा जाफरी।

मेरी माटी मेरा देश, ये कंपेयर्ड कार्यक्रम आप सुनेगा शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर आप सुनिएगा चित्रपट संगीत।

फिल्म संगीत का आनंद आप पुनः ले सकते हैं रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है और आकाशवाणी आगरा केंद्र से रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलाकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का राग बिहाग में ख्याल गायन। श्रोताओं, ये था आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

शुदो सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है भक्ति परक फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर संध्या का। तो सांतिकालीन सभा की शुरुआत करते हैं इस भक्ति गीत के साथ में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुसंध्या। कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, फिल्म साया से। आवाजें थी के श्रेया घोषाल की। सईद कादरी की रचना को संगीत से संवारा था अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है द बर्निंग ट्रेन से। आवाजें हैं सुषमा श्रेष्ठा, पद्मनी कोलापुरी और साथी की। साहिल लुधियानवी की रचना को संगीत से संवारा है आर डी वर्मन ने।

दौबंदिक ट्रेन में अभी आप सुन रहे हैं सुषमा श्रेष्ठ पद्मिनी कोल्हापुरी और साथी को। साहिर लुधियानवी की रचना को संगीत से सवारा है आरटी बर्मन ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म परने से। आवाजें हैं शर्मा बंधु की, गीत को लिखा है रामानंद शर्मा ने, संगीत बद्ध किया है आरटी वर्मन ने।

परिणय फिल्म के संगीत के साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम स्वर संध्या भी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का, तो सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपकी रेडियो साथी प्राची स्वागत करती हूं अपने सभी युवा साथियों का उनके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। और क्योंकि अब बरसात का मौसम आ रहा है और मच्छरों का आगमन भी हो चुका है, ऐसे में खुद को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी मेजर्स लेना भूल नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे मच्छर अक्सर बड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं। वैसे दोस्तों, आपको पता है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी में ये स्पष्ट किया है कि सड़क पर चलने वाले हर नागरिक का फुटपाथ पर सुरक्षित तरीके से चलने का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 19(1)(d) यानी स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार

और आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगर इसे समझें तो ये केवल चलने की सुविधा नहीं है, बल्कि राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर सड़क के साथ सुरक्षित, साफ और अतिक्रमण रहित फुटपाथ उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां सड़क है वहां पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता देना अनिवार्य दायित्व है, और इस अधिकार का उल्लंघन सीधे जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। अब जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। तेज रफ्तार वाहनों के लिए हाईवे बनाए जाते हैं, लेकिन पैदल यात्रियों की सुरक्षा अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यही लापरवाही कई दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ओवर स्पीडिंग सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं, बल्कि ये उस सिस्टम की कमजोरी का भी परिणाम है जहां सड़क डिजाइन में मानव सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। जब पैदल चलने के सुरक्षित मार्ग नहीं होते तो लोग मजबूरी में हाईवे के किनारे चलते हैं, और तेज गति वाली गाड़ियों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आज जरूरत सिर्फ नियमों को सख्त करने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की है, जहां सड़क सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित सड़कें कोई सुविधा नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, कहते हैं कि सफर का असली आनंद मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि सुरक्षित होकर अपने प्रियजनों के पास लौटने में है। आज के दौर में राष्ट्रीय राजमार्ग केवल सड़कों का जाल नहीं है, बल्कि वे देश के विकास, व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क की जीवन रेखा बन चुके हैं। हर दिन लाखों लोग इन मार्गों के माध्यम से अपने सपनों, जिम्मेदारियों और रिश्तों को जोड़ते हैं। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि थोड़ी सी लापरवाही, तेज रफ्तार या यातायात नियमों की अनदेखी कई परिवारों की खुशियां छीन सकती है। इसीलिए विकास की इस तेज रफ्तार के साथ साथ सुरक्षित यात्रा की संस्कृति को अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क लंबाई का लगभग 2% हिस्सा है, लेकिन इन पर देश का लगभग 40% यातायात संचालित होता है। ये तथ्य अपने आप में बताता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश की अर्थव्यवस्था और जनजीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इन मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो सड़क दुर्घटनाएं आज एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में देश में लगभग 1,68,000 लोगों की जानें सड़क दुर्घटनाओं में गईं, और इनमें सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग यानी निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना था। ये तथ्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ मिनट जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी कई बार जीवन भर का दुख दे सकती है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक संकेत भी देखने को मिले हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली मौतों में लगभग 11% की कमी दर्ज की गई है। ये दर्शाता है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और लोगों में बढ़ती जागरूकता धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम दे रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुरक्षित यात्रा की शुरुआत हम स्वयं से कर सकते हैं। सबसे पहले वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का पालन करना आवश्यक है। अक्सर लोग खाली सड़क देखकर तेज गति से वाहन चलाने लगते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं। अक्सर लोग खाली दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का कवच है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सीट बेल्ट के प्रयोग से गंभीर चोटों और मृत्यु के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिर हम ये क्यों नहीं करते? आज के समय में मोबाइल फोन भी सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना, मैसेजेस पढ़ना, सोशल मीडिया का उपयोग करना कुछ सेकंड के लिए हमारा ध्यान भटका सकता है, और यही कुछ सेकंड किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा के दौरान थकान और नींद भी दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। यदि चालक थका हुआ हो तो वाहन चलाने की बजाय कुछ समय आराम करना अधिक समझदारी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार भी लगातार कई कदम उठा रही है। फास्टैग व्यवस्था, बेहतर सड़क अवसंरचना, CCTV निगरानी, आपातकालीन सहायता सेवाएं, एम्बुलेंस नेटवर्क, ट्रॉमा सेंटर और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों के

किनारे सर्विस लेन और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भी पहल की गई थी। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल है गोल्डन आवर की अवधारणा। दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि घायल व्यक्ति को इस दौरान उचित चिकित्सा सहायता मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने और अस्पतालों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे। सड़क पर धैर्य रखना, लेन अनुशासन का पालन करना, नशे की हालत में वाहन न चलाना, ट्रैफिक संकेतों का सम्मान करना और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना, यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। क्योंकि आखिरकार सड़क पर हमारा व्यवहार केवल हमारी सुरक्षा तय नहीं करता, बल्कि हमारे साथ यात्रा कर रहे हजारों अन्य लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुरक्षित यात्रा केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मंजिल पर कुछ मिनट देर से पहुंचना स्वीकार्य है, लेकिन किसी की जिंदगी को खतरे में डालना नहीं। सड़क पर संयम और सतर्कता ही सुरक्षित यात्रा की सबसे बड़ी गारंटी है, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, इसी के साथ चर्चा को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम डिप्लोमेसी या कूटनीति की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र बड़े बड़े नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और वैश्विक मंचों पर जाती है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर बातचीत की उस मेज पर हर आवाज़ को बराबरी से जगह मिले तो फैसले कितने ज़्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ हो सकते हैं? यही है इंक्लूसिव डिप्लोमेसी, एक ऐसी कूटनीति जहाँ सिर्फ देशों की नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज़ सुनी जाए। और इस तस्वीर का सबसे मजबूत और प्रेरणादायक पक्ष है महिलाएं, क्योंकि जब महिलाएं केवल दर्शक नहीं बल्कि डिसीजन मेकर्स बनती हैं तो संवाद में संवेदनशीलता, सहयोग और नए नजरिए अपने आप जुड़ जाते हैं। तो आज की वार्ता में हम सुनेंगे हिबा जाफरी को, जो बात करेंगी समावेशी कूटनीति में महिला शक्ति की बढ़ती भूमिका के बारे में, यानी कैसे महिलाओं की भागीदारी सिर्फ समानता का सवाल नहीं बल्कि बेहतर और अधिक समावेशी दुनिया की जरूरत है।
1: अगर इंसान को सचमुच किसी समाज की सोच को समझना हो तो उसे पहले किताबों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो बातें राजनीति देर से समझती है, साहित्य उन्हें बहुत पहले लिख चुका होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जब अपने पात्रों को गढ़ा तो उन्होंने महिलाओं को दया या सहानुभूति का पात्र नहीं बनाया। उन्होंने दिखाया कि समाज की असली मजबूती उन कंधों पर टिकी है जिन्हें अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है। और महादेवी वर्मा, उन्होंने तो मानो पूरे समाज से एक सीधा सवाल पूछा था, क्या स्त्रियां पीछे हैं या हमने उनके रास्ते खुद छोटे कर दिए हैं। उनका विश्वास था कि अवसर मिलते ही महिलाएं केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नए क्षितिज खोल सकती हैं। और मजे की बात तो देखिए, यही बातें दुनिया के बड़े विचारक भी कह रहे थे। साइमन दे ब्योर ने कहा कि किसी समाज की प्रगति उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वहां अवसर कितने बराबर हैं। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ने चेतावनी दी थी कि अगर लोकतंत्र में आधी आबादी की आवाज कमजोर है तो लोकतंत्र भी आधा ही रह जाएगा। विडंबना देखिए, जिन विचारों को कभी कुछ लोगों ने किताबी बातें कहकर किनारे रख दिया था, आज वही बातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समावेशी विकास और महिला नेतृत्व के नाम से बड़े गर्व के साथ दोहराई जा रही हैं। शायद विचारों की दुनिया का भी अपना धैर्य होता है, वो शोर नहीं मचाते बस समय का इंतजार करते हैं। दरअसल समस्या महिलाओं की क्षमता में कभी थी ही नहीं, समस्या हमारी धारणाओं में थी। और जरा सोचिए, दुनिया के अधिकांश बड़े युद्ध किसने शुरू किए? इतिहास की किताबें पलटिए, नाम अधिकतर पुरुष नेताओं के ही मिलेंगे। लेकिन जब हालात बिगड़े तब सबको याद आया कि अब बातचीत करनी चाहिए, विश्वास बहाल करना चाहिए, सहमति बनानी चाहिए, यानी अंत में फिर वही गुण काम आए जिन्हें कभी भावुकता कहकर कमजोरी समझा गया था। जिन्होंने सदियों तक कहा कि महिलाएं भावनाओं से निर्णय लेती हैं, वही आज इमोशनल इंटेलिजेंस पर सेमिनार कर रहे हैं और उसे नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। अगर इतिहास की किताबों को ध्यान से पढ़ा जाए तो एक दिलचस्प बात समझ में आती है। महिलाओं की बढ़ती भूमिका कोई नया अध्याय नहीं है बल्कि उस अध्याय की वापसी है जिसे बीच के कुछ पन्नों में जानबूझकर कम पढ़ा गया। अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं अब लीडरशिप में आगे आ रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो हमेशा से आगे थीं। बस इतिहास लिखने वालों की कलम ने कभी कभी उनकी उपस्थिति फुटनोट में डाल दी। भारतीय सभ्यता में जब दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं की आवाज घर की चार दीवारी तक सीमित थी, तब मैत्रेयी ज्ञान और दर्शन पर बहस कर रही थी। उस समय भारत ने यह संदेश दिया था कि बुद्धि और विचार का कोई लिंग नहीं होता। कूटनीति लंबे समय तक विश्व राजनीति का वो क्षेत्र माना जाता रहा जिस पर पुरुषों का लगभग एकाधिकार था। राजनयिक वार्ताओं से लेकर युद्ध और शांति के

0: समझौतों तक, विदेश नीति के निर्धारण से लेकर वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व तक महिलाओं की उपस्थिति बहुत सीमित थी। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में विश्व राजनीति का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आज महिलाएं न केवल कूटनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, बल्कि वो वैश्विक राजनीति की दिशा और दशा को भी प्रभावित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस जैसे दिन उन महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हैं जिन्होंने संवाद, शांति, सहयोग और समावेशी विकास के माध्यम से विश्व राजनीति को अधिक मानवीय बनाने का प्रयास किया है। आज जब विश्व अनेक संकटों, युद्ध, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, खाद्य संकट, महामारी और मानवीय चुनौतियों इत्यादि से जूझ रहा है, तब महिला लीडरशिप और समावेशी कूटनीति की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इतिहास में अनेक महिलाओं ने अपने समय में असाधारण कूटनीतिक क्षमता का परिचय दिया। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में कई रानियों और शासिकाओं ने युद्धों को टालने, समझौता कराने और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक काल में महिलाओं की कूटनीतिक भूमिका धीरे धीरे औपचारिक संस्थानों तक पहुँची है। 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने विदेश सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय संस्थानों में प्रवेश करना शुरू किया। हालांकि ये यात्रा आसान नहीं थी। लंबे समय तक महिलाओं को उच्च पदों और निर्णायक भूमिकाओं से दूर रखा गया। आज परिस्थितियां बदल रही हैं और महिलाएं विदेश मंत्री, राजदूत, वार्ताकार, शांति दूत तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख के रूप में कार्य कर रही हैं। भारत की विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उस समय दुनिया के कई देशों में महिलाएं वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी और भारत की एक बेटी विश्व मंच का नेतृत्व कर रही थी। ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि उस सोच को जवाब था जो मानती थी कि कूटनीति सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र है। वर्तमान दुनिया के अनेक देशों में महिलाओं ने सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर पहुंचकर प्रभावशाली नेतृत्व प्रस्तुत किया है। एंजेला मर्केल, जेसिंडा आर्डन, कमला हैरिस, उर्सुला वॉन डर लियन वैश्विक स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन अनेक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। प्रतिनिधित्व की कमी, नेतृत्व पदों पर कम भागीदारी, उच्च निर्णायक पदों पर पुरुषों का वर्चस्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, कार्य जीवन संतुलन, सुरक्षा और भेदभाव जैसे कई मुद्दे हैं। लेकिन कूटनीति सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये विश्वास का विज्ञान और संवाद की कला है। इसमें आवाज ऊंची करने से ज्यादा जरूरी है दूसरे की बात को सुनना। यही कारण है कि आज दुनिया विमेन इन डिप्लोमेसी की नहीं, बल्कि विमेन लेड डिप्लोमेसी की बात कर रही है। ये सही समय है जब हम ये स्वीकार करें कि वैश्विक राजनीति का भविष्य केवल शक्ति संतुलन से नहीं, बल्कि संवेदनशील, समावेशी और मानवीय नेतृत्व से निर्धारित होगा, और इस परिवर्तन की अग्रिम पंक्तियों में महिलाएं हमेशा खड़ी मिलेंगी।
1: साथियों, हम सुन रहे थे हिबा जाफरी को, जिन्होंने बात की समावेशी कूटनीति में महिला शक्ति की बढ़ती भूमिका के बारे में। इसी के साथ मेरे मन में आता है एक सवाल, तो बताइए कि कौन है विश्व की पहली महिला जो कि यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी? इसका जवाब दूंगी मैं आपको कार्यक्रम के अंत में। तब तक बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं आर्बिट्रेज फंड के बारे में। आज के समय में सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो उसकी मेहनत की कमाई भी सही जगह इन्वेस्ट ना होने के कारण धीरे धीरे वैल्यू खो सकती है। इसलिए सेविंग्स करना और बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग रखना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है। आज जब महंगाई बढ़ रही है और फ्यूचर एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तब स्मार्ट सेविंग और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना और भी इम्पॉर्टेंट होता जाता है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसे लोग रिलेटिवली सेफ और स्मार्ट मानते हैं, आर्बिट्रेज फंड। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी सेविंग्स ऐसी जगह इन्वेस्ट हों जहां अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन रिस्क कम हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत होता है, जिससे कई लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है आर्बिट्रेज फंड। सबसे पहले समझते हैं कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मतलब है कि एक ही शेयर की अलग अलग मार्केट या अलग अलग टाइम पर होने वाली प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना। अब आर्बिट्रेज इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं।

फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर की प्राइस कैश मार्केट में 1,000 रुपए है और फ्यूचर मार्केट में 1,015 रुपए, तो फंड मैनेजर उस शेयर को कैश मार्केट में खरीद कर फ्यूचर मार्केट में बेच देता है। इस डिफरेंस से जो प्रॉफिट बनता है वही आर्बिट्रेज फंड की अर्निंग होती है। आर्बिट्रेज फंड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि यहाँ बाइंग और सेलिंग लगभग एक साथ होती है, इसलिए मार्केट के सडन अप्स एंड डाउन्स का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ये फंड्स उन लोगों के लिए अच्छे माने जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं और सेविंग अकाउंट्स या फंड्स फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा बेटर रिटर्न चाहते हैं। टैक्सेशन के हिसाब से भी इन्हें इक्विटी फंड की तरह ट्रीट किया जाता है, जिससे कुछ केसेस में टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। आज के समय में जब मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तब आर्बिट्रेज फंड्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आर्बिट्रेज फंड्स पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होते। इनके रिटर्न मार्केट कंडीशंस और प्राइस डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनमें बहुत हाई या फिक्स रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कंक्लूडेड कहा जा सकता है कि आर्बिट्रेज फंड्स एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कम रिस्क के साथ मॉडरेट रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट वही है जो सिर्फ पैसा ना बढ़ाए बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मजबूत करे। साथियों, इसके साथ इस सेगमेंट की समाप्ति के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने सपनों, पढ़ाई, नौकरी और सोशल मीडिया में इतने उलझ गए हैं कि कई बार हमारे आसपास के लोगों की भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। किसी दोस्त का मैसेज इग्नोर कर देना, किसी की परेशानी को ड्रामा समझ लेना या किसी चुप रहने वाले व्यक्ति को बार बार नजरअंदाज करना, ये सब आम हो गया है। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी का मतलब है दूसरों की स्थिति और भावनाओं को समझना और उसी हिसाब से व्यवहार करना। ये कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक मजबूत और परिपक्व सोच की पहचान है। आज के युवाओं की ही बात करें तो कई बार कॉलेज या ग्रुप वर्क में कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसे अलग छोड़ दिया जाता है। कोई दोस्त अगर मानसिक रूप से परेशान है तो उसे ओवरथिंकिंग कहकर टाल दिया जाता है या फिर किसी की गलती पर उसे सबके सामने नीचा दिखा दिया जाता है। सोचिए, ऐसे व्यवहार से सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। संवेदनशील होना मतलब हर चीज पर सहमत होना नहीं है बल्कि सही समय पर सही तरीके से समझना और साथ देना है। अगर कोई चुप है तो उसे अकेला छोड़ने के बजाय पूछिए कि क्या वो ठीक है। अगर कोई गलत है तो उसे मजाक बनाकर नहीं बल्कि शांति से समझाइए। और अगर कोई टूट रहा है तो उसे सलाह से पहले थोड़ा सहारा दीजिए। आज के समय में तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे में एक छोटा सा अपना सा व्यवहार भी किसी की सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव मत बनो, लेकिन सच ये है कि अगर दुनिया में संवेदनशीलता कम हो जाए तो इंसानियत भी कम हो जाएगी। अंत में अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा भी ध्यान, समझ और अपनापन जोड़ दें तो हमारे रिश्ते ज्यादा मजबूत और समाज ज्यादा अच्छा बन सकता है, क्योंकि असली ताकत वही है जो दूसरों के दर्द को समझे। मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि कौन है वो महिला जो UN जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, जिसका उत्तर है भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि एक प्रोमिनेंट डिप्लोमेट और फ्रीडम फाइटर भी थी। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर मिलेंगे आपसे इन्हीं कार्यक्रमों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और अपनी रेडियो साथी प्राची को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

क्रमेलो कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को आपकी रेडियो साथी ऋतु चौका राम राम नमस्कार। मित्रों, हम कुछ जरूरी बातें थोड़े थोड़े समय में फिर से दोहराते रहते हैं, क्योंकि वो न केवल आपके लिए लाभदायक हैं बल्कि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के बारे में भी कुछ जरूरी बातें आपसे साझा हो जाती हैं। जैसे कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए हरी खाद अधिक लाभकारी है।

और यदि हरी खाद के साथ ही फसल चक्र का ध्यान रखते हुए बुआई की जाए तो कम लागत में और कम उर्वरकों के साथ भी भरपूर फसल ली जा सकती है। मित्रों, फसल चक्र मुख्यतः तीन प्रकार के हैं जिन्हें खरीफ, रबी और जायद फसलों में अपनाया जा सकता है। जैसे कि उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगाई जाए, या फिर अधिक खाद की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम खाद की जरूरत वाली फसल दी जाए। इसके साथ ही अधिक जल की आवश्यकता वाली फसल के बाद कम जल की जरूरत वाली फसलें उगाई जाएं। मित्रों, यदि फसल चक्र का ये नियम अपनाया जाए तो न केवल उपज ज्यादा मिलती है, बल्कि इससे हमारे किसान भाइयों के पास साल भर कृषि कार्य रहता है। साथियों, फसल चक्र के चार विशेष लाभ हैं। एक तो मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। इसके साथ ही जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है और भूमि में पनपने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रभाव में भी कमी आती है और साथ ही कीट और खरपतवार पर नियंत्रण रहता है। साथियों, ऐसा नहीं कि हम आप फसल चक्र के बारे में जानते नहीं, बल्कि हमारी परंपरागत खेती का तो आधार ही फसल चक्र रहा है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण सघन कृषि कार्यक्रम के अनुसार पिछले कुछ दशक में रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ा और अधिक उपज के चक्कर में हमने फसल चक्र भुला दिया और इस कारण अब धरती बंजर होने लगी है, या फिर अधिक रासायनिक खाद के कारण दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्य पर दिखने लगे हैं। तो भैया, अब समय की मांग यही है कि हम फिर से खेती बाड़ी में कुछ परंपरागत तरीके अपनाएं, जैसे कि हल्के और खराब बीज को छांटने या अलग करने के लिए नमक के घोल का प्रयोग करें, जो कि बाजरा और धान में ज्यादा कारगर होता है। इसके साथ ही बीजोपचार के लिए नीम घोल या गोमूत्र का प्रयोग करें। और भैया, इस बार तो मौसम वैज्ञानिकों ने अल नीनो के आगमन की आशंका भी व्यक्त की है। अल नीनो यानी कम बारिश, जिसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ सकता है। तो भैया, चिंता से ज्यादा जरूरी खेती बागवानी के स्मार्ट तरीके अपनाने की है, जैसे कि सोलर पंप द्वारा बिजली बचत करना और टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई द्वारा पानी की बचत करते हुए बड़ी उपज लेना और फिर सुकून से प्रभु का नाम जपना।

0: साथियों, हम अच्छी उपज के लिए जैसे उन्नत बीज का चयन करते हैं, वैसे ही बढ़िया दुग्ध उत्पादन के लिए हम बढ़िया पशु नस्ल का चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही पशुओं का सेहतमंद रहना भी जरूरी है। और इसके लिए आवश्यक है पशुओं की समय समय पर चिकित्सकीय जांच और टीकाकरण। अब सवाल ये है कि कब कौन सा टीका लगवाना है, तो भैया आज इसी विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरीश चंद्र। तो चलिए सुनते हैं ये वार्ता, पशुओं का टीकाकरण कब और कैसे।
1: प्रिय पशुपालक भाइयों, पशुओं से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हमें जिन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनमें सर्वप्रथम हमें अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन करना चाहिए। इसके बाद उनके लिए अच्छे एवं सुविधाजनक आवास की व्यवस्था, उचित पौष्टिक आहार की खिलाई पिलाई की व्यवस्था करनी है। पशुओं में प्रजनन स्वस्थ एवं बाधा रहित हो सके एवं हमें उत्पादन अधिक मात्रा में मिल सके, इसके लिए प्रजनन संबंधी देखभाल एवं पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो अन्य व्यवस्थाएं

आप चाहे जितनी अच्छी कर लें, पशुओं से अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते और पशुपालन आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। पशुओं को रोग और बीमारियों से बचाने के लिए, पशुओं में होने वाली बीमारियों की जानकारी, उनके बचाव के लिए टीकाकरण कब और कैसे किया जाए इसकी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर हम पशुपालकों को ऐसी ही जानकारी से अवगत कराएंगे। पशुओं की बीमारी में प्रमुख रूप से खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर, एंटीरोटॉक्सीमिया आदि हैं। इन सभी बीमारियों की कारगर रोकथाम सिर्फ टीकाकरण से ही संभव है। टीकाकरण से बीमारियों की रोकथाम करना इलाज की तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता है, तथा कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके होने के बाद

बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके होने के बाद कितना भी इलाज किया जाए परंतु वे ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण एक उचित समाधान है। खुरपका मुंहपका, इसको आम बोलचाल की भाषा में खुसीटा या पका के नाम से भी जाना जाता है। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इस बीमारी में पशु मरता तो नहीं है परंतु किसी काम का नहीं रह जाता है, अर्थात दूध या किसी अन्य कार्य को करने की हालत में नहीं रह जाता है और गर्भपात की संभावना भी बनी रहती है। बीमारी में प्रमुख रूप से मुंह तथा पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कभी कभी पैरों में कीड़े भी पड़ जाते हैं जिससे पशु चलना फिरना बंद कर देता है और खाना पीना छोड़ देता है। पशु बहुत कमजोर हो जाता है और उसका उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। यह टीका वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, एक बार मार्च अप्रैल के महीने में तथा दूसरी बार सितंबर अक्टूबर के महीने में। उम्र के अनुसार पहला टीका 4 माह की उम्र के बाद लगाया जाता है। दूसरा टीका, जिसे बूस्टर टीका भी कहते हैं, 6 माह बाद लगाया जाता है। इसके बाद प्रति 6 माह पर अर्थात साल में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। HS या गला घोंटू, इस बीमारी को बोलचाल की भाषा में घुर्रका भी कहते हैं। यह बहुत ही घातक एवं तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इसकी रोकथाम टीकाकरण से ही संभव है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा पड़ता है और पशु के ठीक होने की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, मुंह से घर घर की आवाज आना तथा गर्दन के निचले वाले हिस्से में सूजन का आना है। बीमारी का पहली बार टीका 4 माह की उम्र के बाद तथा उसके बाद प्रतिवर्ष वर्षा शुरू होने से पहले जून जुलाई के महीने में लगाया जाना चाहिए। यह टीका भी पशुपालन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निःशुल्क लगाया जाता है। गलाघोंटू की बीमारी कभी कभी ठंड के दिनों में भी हो जाती है, इसलिए इस बीमारी का टीका नम इलाकों में दोबारा 6 महीने बाद भी लगाया जा सकता है। BQ, इस बीमारी को लंगड़ी या एकटंगा या चौरंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी अधिकतर जवान पशुओं में जिनकी उम्र 3 से 4 साल होती है ज्यादा प्रभाव दिखाती है। यह बीमारी भी एक घातक रोग है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है, एक पैर से लंगड़ाता है, कभी कभी पशु चारों पैरों से भी लंगड़ाता है, पशु के पुट्ठों पर सूजन आ जाती है जिसे दबाने पर चर चर की आवाज आती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि सूजन में हवा या गैस भरी हो। इस बीमारी का कारगर इलाज काफी मुश्किल होता है। इसका टीकाकरण भी 4 माह की उम्र के बाद अवश्य करा लेना चाहिए। बूस्टर टीका पहले टीके के 6 माह बाद किया जाता है, उसके बाद प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में टीकाकरण करा सकते हैं। इस बीमारी का टीका गलाघोंटू के टीके के साथ मिला हुआ भी मिलता है, हालांकि यह बीमारी इस क्षेत्र में बहुत कम मिलती है। ब्रुसेलोसिस, यह एक संक्रामक गर्भपात की बीमारी है। इसमें पशु बच्चा फेंक देता है। अधिकांशतः पशु 6 महीने के बाद ही बच्चा फेंकता है। इस बीमारी से पशु स्थायी रूप से बांझ भी हो जाता है। बीमारी का टीकाकरण 4 माह से 8 माह की उम्र के बीच लगाया जाना अच्छे परिणाम देता है तथा एक बार टीकाकरण पशु को जीवन भर इस बीमारी से सुरक्षित रखता है। PPR, इस बीमारी को पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी प्रमुख रूप से भेड़ व बकरियों की बीमारी है। यह बहुत ही घातक एवं संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से पशु में तेज बुखार, मुंह में छाले, नाक का बहना, दस्त लगना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा बाद में निमोनिया भी हो जाता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। इस बीमारी में मृत्यु दर काफी अधिक होती है। बीमार पशुओं में से इलाज के बावजूद भी लगभग 85% तक पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसका टीकाकरण भी 4 माह की उम्र के बाद किया जाता है। एक बार टीका लगाने के बाद पशु 3 वर्ष तक इस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। यह टीका भी पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है। एंटीरोटॉक्सिमिया, यह भेड़ बकरियों की आमाशय एवं आंत संबंधी बहुत ही घातक बीमारी है। इस बीमारी में पशु को खूनी दस्त, तेज बुखार तथा पेट दर्द होता है। इस बीमारी का टीका भी 4 माह की उम्र के बाद लगाया जाता है।
और अंत में टीकाकरण संबंधी कुछ आवश्यक बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। किसी भी बीमारी का टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही किया जाता है। गर्भावस्था के आखिरी दिनों अर्थात 8 महीने से अधिक गर्भित पशु को टीका नहीं लगाया जाना है।

0: 4 माह से छोटे बच्चों को भी टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। टीकाकरण संबंधी पशुपालकों में कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि टीके से दूध कम हो जाता है या बच्चा गिर जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है।
1: अभी आपने सुनी वार्ता पशुओं का टीकाकरण कब और कैसे। आज हमारे वार्ताकार थे डॉक्टर हरीश चंद्र।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, बदलती जलवायु और बढ़ते तापमान के साथ अब ये जरूरी हो गया है कि हम स्मार्ट खेती करें और बीज की ऐसी किस्म का चुनाव करें जो कम समय और कम पानी में भी उगाई जा सकें। और ऐसी ही धान की नई किस्में हैं DRR धान 92, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनाज की गुणवत्ता जैसे गुणों से भरपूर है। और दूसरी धान की नई किस्म है CR धान 217, जो लगभग 118 दिनों में तैयार हो जाएगी। यह पूर्वी और मध्य भारत में उगाई जा सकेगी। तो भैया, जाग जाइए और बीज की नई किस्मों के साथ लीजिए भरपूर फसल का उपहार। और अब जान लीजिए फिर से आज और कल के तापमान और मौसम का हाल। आज आगरा और उसके आसपास के इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा और हल्के बादल भी छाए रहे। कल यानी गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम के साथ ही मंडी भाव भी जान लीजिए। आज आगरा मंडी में दलहन में अरहर दाल का भाव रहा 9,800 से 10,100 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,350 से 7,600 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द दाल 9,700 से 9,950 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 8,850 से 9,050 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर दाल 9,150 से 9,350 रुपये प्रति क्विंटल। और भैया, अब इतनी सारी कामकाज की बातों पर लगाते हैं विराम और करते हैं मीठे से लोकगीत का गान।

साथियों, खरीफ की बुआई शुरू होने वाली है और अधिकांश किसान भाई बीज सीधे खेत में डाल देते हैं। मित्रों, दरअसल बीज दिखने में स्वस्थ हो सकता है, लेकिन उसमें बीज जनित और मृदा जनित रोग छिपे हो सकते हैं। तो भैया, जरूरी है बीज उपचार करना और फिर भरपूर फसल का उपहार लेना और फिर हमारे साथ मिलकर गुनगुनाना।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी। साथियों, मेहनत की बात करें तो मेहनत तो हमारे श्रमिक भाइयों के साथ साथ हमारी श्रमिक बहनें भी खूब करती हैं और उनके ऊपर तो दोहरे दायित्व भी होते हैं, क्योंकि एक ओर तो वो अपना घर संभालती हैं और दूसरी ओर अपने परिवार को चलाने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत भी करती हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात भी होती है। और इस तरह से वे साथियों देश की प्रगति में अपना योगदान भी देती हैं। और साथियों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देश की प्रगति तभी हो सकती है जब समाज में सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों, चाहे फिर वह महिला हो या पुरुष, जिसमें कि महिलाओं ने तो आज के समय में ये सिद्ध करके भी दिखा दिया है कि वे केवल परिवार की जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, सेना और न्याय व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। वहीं साथियों, पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में तो प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती थी, या यूँ कहें कि ना के बराबर होती थी, क्योंकि उस समय महिलाओं को ज़्यादा

तवज्जो नहीं दिया जाता था। महिलाओं के लिए अनेक रूढ़िवादी धारणाएं और सीमाएं होती थीं, जिससे बाहर जाना महिलाओं के लिए नामुमकिन सा होता था, जिसके कारण महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर भी नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज शिक्षा के प्रसार, जागरूकता और सरकारी नीतियों के कारण स्थिति तेजी से बदल रही है। आज महिलाएं भी देश के सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी कर रही हैं। आज महिलाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, PCS और अन्य सरकारी विभागों में भी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। वे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सचिव, आयुक्त और विभिन्न उच्च प्रशासनिक पदों पर रहकर देश की सेवा और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसी के साथ स्थानीय प्रशासन में भी महिलाओं की भूमिका आज बढ़ रही है। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिलने के कारण लाखों महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। वे आज गांव और शहरों में विकास कार्यों की निगरानी कर रही हैं एवं जनता की समस्याओं का समाधान भी कर रही हैं, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत बन रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन साथियों, कई जगह आज भी महिलाओं को काम के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कार्यस्थल पर भेदभाव, सामाजिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सुरक्षा संबंधी समस्याएं कभी कभी उनके मार्ग में बाधा बन जाती हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी साथियों, महिलाएं अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ती रहती हैं। साथियों, आज महिलाओं की प्रशासन में बढ़ती भागीदारी केवल महिलाओं की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे समाज व देश की प्रगति का प्रतीक है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो प्रशासन अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनता है। इसलिए आज हमें बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और समान अवसर प्रदान करने में उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। क्योंकि महिलाओं की बढ़ती प्रशासनिक भूमिका एक सकारात्मक परिवर्तन है। यह न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है, बल्कि एक विकसित, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत की ओर बढ़ता कदम भी है, जिसके लिए महिलाओं के योगदान का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। साथियों, आपसे आज का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप ढूंढिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है आपके मनोरंजन का। तो आइए सुनवाते हैं आपको मधुर गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम बात करेंगे ज्ञान सागर की। और साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, संगीत शिक्षक और संगीत विज्ञानी की, जो कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। साथियों, हम बात कर रहे हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की, जिनकी आज हम सभी जयंती भी मना रहे हैं। साथियों, वे ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने ही भारतीय संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। 24 जून 1897 को गुजरात के एक साधारण परिवार में जन्मे ओंकारनाथ ठाकुर जी को बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। इसलिए उन्होंने महान संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में गिने जाने लगे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने न केवल एक संगीतज्ञ थे बल्कि महान राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपने संगीत के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की थी। उस समय महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़कर उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी गायकी से राष्ट्रप्रेम और भक्ति की गहरी छाप छोड़ी थी। वहीं साथियों, उनकी उपलब्धियों और योगदान की बात करें तो उन्होंने BHU में संगीत संकाय की स्थापना की और वहाँ पहले डीन के रूप में काम किया। इसी के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध कुलगीत मदन मोहन मालवीय उन्हीं की उत्कृष्ट रचना रही। संगीत के विभिन्न पहलुओं पर आधारित प्रवण भारती और संगीतांजलि जैसी

0: पुस्तकें उन्होंने ही लिखी थी। साथ ही पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी को सरकार द्वारा कई बार सम्मानित भी किया गया। सन 1955 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और बाद में 1964 में BHU और रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। साथ ही उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे भीतर दृढ़ संकल्प, परिश्रम और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो फिर कठिन परिस्थितियां भी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, जो कि सच्ची बात भी है। साथियों, आज हम उनकी जयंती पर हम सभी को उनके जीवन से ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम सभी को अपनी संस्कृति, कला, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ ही अब बता देते हैं आपको आज के प्रश्न का जवाब। साथी, आज का प्रश्न हमारा था कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, जिसका जवाब है किरण बेदी जी। जी हाँ साथियों, वर्ष 1972 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी और देश की पहली महिला IPS अधिकारी बनकर इतिहास रचा था, जो कि साथियों न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश और विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रेरणा, साहस और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक था। तो चलिए साथियों, बातें आगे और भी होगी, फिलहाल वक्त है एक विराम का, जल्द हाजिर होते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, कार्यक्रम में चर्चा और संगीत के बाद अब बारी है काव्य पाठ की, जिसमें आप कवि मनोज कुमार जी के द्वारा सुनेंगे सुंदर रचनाएं और गीत। तो आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ।
2: आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं का सादर नमस्कार। आइए मैं अपने परिचय के मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। है भोलापन, लड़कपन और थोड़ा बाबुरापन है। है भोलापन, लड़कपन और थोड़ा बाबुरापन है। अनूठापन है अपनापन, प्रभापन और नयापन है। परख कर देख लेते जो कसौटी पर मुझे रख कर, परख कर देख लेते जो कसौटी पर मुझे रख कर। मेरे दिल में न मेलापन, यहाँ केवल खरापन है। मेरे दिल में न मेलापन, यहाँ केवल खरापन है। प्रेम की बात करता हूँ तो आइए चार पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ। मैं चरागों सा जलता रहा रात भर, और अंधेरों को खलता रहा रात भर। मैं चरागों सा जलता रहा रात भर।

अरे मोमुसा में पिघलता रहा रातों भर, मोमुसा में पिघलता रहा रातों भर। और चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। जब

हट गया आवरण, जो कठिन ग्रंथ थे सब सरल हो गए, जो कठिन ग्रंथ थे सब सरल हो गए। आ गया जब समझ प्रेम का व्याकरण, आ गया।

जब समझो प्रेम का व्याकरण। तो आइए एक प्रेम का गीत निवेद करता हूँ, संवेदनाओं का गीत है, सुनिएगा। हृदयों में पलो रहे इन आंसुओं को,

मनु की हर एक ग्रंथियों में छुपा उम्मीद का कोई सवेरा, न घबराओ तुम्हारे गीत की हर पंक्तियों में बहा

की हर एक ग्रंथियों में छुपा उम्मीद का कोई सबेरा, तुम्हारे मन की हर एक ग्रंथियों में छुपा

यही है रास्ता, अब न घबराओ, यही है रास्ता।

ने बनते और बिगड़ते, वो सूने अखंड हर यूं ही खड़े हैं। घरों देखी तूने बनते और बिगड़ते, वो सूने खंड हर यूं ही खड़े हैं। न जाने कितनी रातों के अधूरे सपनों।

को। और इस गीत का अंतिम बंद, बहुत तू ही जी लिया पतझड़ सजीवन, अभी भी शेष हैं कुछ तो बहारें, बहुत तू ही जी लिया पतझड़ सजीवन, अभी भी शेष हैं कुछ तो बहारें, बुलाती प्रेम ऋतु इसमें नहाने, मचलती वादियां तुमको।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ, जिसके कवि थे मनोज कुमार। और अब वक्त है सेहत की बात करने का। साथियों, आज के सेहत टिप्स में हम बात करने वाले हैं कई सारे गुणों से भरपूर सूखे मेवे किशमिश की, जिसमें सारे साथियों कई सारे अनेक पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद भी करते हैं। साथियों, किशमिश का नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने से शरीर को ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही कमजोरी भी दूर होती है। इसमें मौजूद आयरन शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाला कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाने में हमारी सहायता करता है। साथियों, इस गुणकारी किशमिश का किस तरह से उपयोग करना है, आइए जानते हैं इस घरेलू नुस्खों के द्वारा। साथियों, अगर किसी को अपने शरीर में एनर्जी की कमी या खून की कमी लगती हो, तो वे रात में 8 से 10 किशमिश को पानी में भिगो दें और सुबह होने पर उन्हें खा लें, साथ ही उस पानी को भी पी लें। ऐसा करने से आपके शरीर में नया खून तो बनेगा ही, साथ ही नई ऊर्जा और पाचन क्रिया भी दुरुस्त होगी। साथियों, किशमिश को गर्म दूध के साथ भी लिया जा सकता है। उसके लिए दूध में कुछ किशमिश डालकर उबाल लें और उस दूध को ठंडा होने पर उसे पी लें। ऐसा करने से आपको पोषण और एनर्जी दोनों ही मिलेगी, साथ ही हड्डियों में भी मजबूती आएगी। साथियों, ये थी सेहत से जुड़ी बात, और अब वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

0: अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमीसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने

0: भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Three people have died after a devastating roof collapse of an under-construction godown at Taratala area of Kolkata today. Contact has been established with the trapped people inside the debris, and water and oxygen have been provided by the rescue team. Efforts are underway to rescue them. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari visited the spot and inspected the site. He informed the media a report would be prepared by the Kolkata Municipal Corporation on the incident. He said a detailed information would be provided involving the Taratala accident tomorrow in the assembly. In Arunachal Pradesh, heavy rainfall and flash floods have caused widespread damage today at Neepko Colony in Bosai Azali under Cape and Yore district. Authorities are assessing the extent of the damage and further details are awaited. The district administration said a woman was initially reportedly missing, while the latest reports indicate that three persons are unaccounted for. Authorities have not yet confirmed any casualty. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi this morning. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-US trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Director of National Security of South Korea, Wee Sung-lak, this evening. In a social media post, the minister said that they had a useful exchange of strategic assessments on global developments and the Indo-Pacific. Earlier today, Dr. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks,

टू वो अब चांद तारों तक पहुंचकर सुनीता विलियम्स बनकर उसके वैज्ञानिक पक्ष की भी बात करती है। मशहूर शायर मजाज ने अपनी नज्म नौजवान खातून से मैं क्या खूब कहा है, तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साजे बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये सही है कि औरत आंचल से परचम बनाने की ताकत रखती है, मगर वो आज भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है। निम्न जीवन स्तर, घरेलू हिंसा, पर्दा प्रथा जैसी परेशानियों से वो आज भी जूझ रही है। एक सर्वे

0: तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये सही है कि औरत आंचल से परचम बनाने की ताकत रखती है, मगर वो आज भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है। निम्न जीवन स्तर, घरेलू हिंसा, पर्दा प्रथा जैसी परेशानियों से वो आज भी जूझ रही है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में हर आधे घंटे में एक महिला की इज्जत लूटी जा रही है। मुस्लिम महिलाओं में तलाक का मुद्दा आज भी उन्हें असुरक्षित और अपमानित महसूस कराता है। आज भले ही नारी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो गई है, किंतु घर, समाज और देश के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अभी भी उसे नहीं मिल सका है। कार्यस्थल पर उसका शोषण आज भी जारी है। कन्या भ्रूण हत्या गली गली में डॉक्टर आज भी कर रहे हैं। औरतों पर तेजाब डालकर उन्हें कुरूप किया जा रहा है। स्त्री का देह व्यापार हो रहा है और सरेराह छोटी बच्चियों और लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद महिला उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। स्पष्ट है कि इन प्रावधानों के बीच कहीं कोई कमी या सुराख है, कि अधिकतर मामलों में अपराधी कानून से साफ बच जाता है। जन चेतना को जागृत करने के साथ साथ हमें आर्थिक रूप से महिला को मजबूत करना होगा। आत्मनिर्भर महिला सामाजिक रूप से सम्मान प्राप्त कर उत्पीड़न का विरोध कर सकने में अधिक सक्षम होती है। स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में बेहतरीन काम कर सकते हैं, क्योंकि समाजसेवी संगठनों का जनता से सीधा संपर्क बना रहता है। ये संगठन महिला में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। महिलाओं को कानून का ज्ञान देना परम आवश्यक है, और इन सबसे भी ज्यादा आवश्यक है कि घर में माता पिता, बेटा और बेटी की परवरिश करने में कोई भेदभाव ना करें और दोनों को समान अधिकार दें। अपने इस शोषण के विरुद्ध महिलाओं को स्वयं तनकर खड़ा होना होगा और व्यवस्था परिवर्तन में अपनी सजग भूमिका का निर्वहन नारी को ही करना होगा। आज स्त्री ने सदियों की खामोशी तोड़ी है, उसकी नियति में बदलाव आया है। वह अपने वजूद को महसूस कर रही है, वो अपनी बराबरी के हक को महसूस कर रही है। उसे साथ चाहिए तो इस समाज का, अपने परिवार का, मीडिया का और ऐसी व्यवस्था का जो उन्हें जल्दी न्याय दिला सके। आज की नारी सशक्त है, उसकी भागीदारी के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जा रहा है। वर्तमान परिवेश में नारी को एक खुला एवं स्वतंत्र आसमान मिला है, जहां वो आर्थिक निर्भरता के साथ अपना व परिवार का विकास एवं पालन पोषण कर सकती है, तथा अपना भी आंतरिक तथा बाह्य विकास कर रही है। अंत में मैं मशहूर उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन आली की पंक्तियां सुनाऊंगी। ए माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे है, मुनिस हो ख्वाहिंदों की तुम, गमखार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शादा जाफरी की वार्ता। विषय था महिलाओं को भी मिले बराबरी का हक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरू में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाये। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
1: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, इसके क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
2: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
3: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात यह आई कि कुछ ग्रंथ यहां पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहां भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें और

0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
1: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजे है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, तो सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

मेरा अक्स भी वो, मेरी छाया भी वो, मेरा हमदम भी वो, मेरा सरमाया भी वो, मेरी गीता भी वो, मेरी कुरान भी वो, मेरी पूजा भी वो, मेरी अजान भी वो, मेरा सुकून भी वो, मेरा जुनून भी वो, मेरा होश भी वो, मेरा जोश भी वो। इस जहां में उसका कोई नहीं, कोई पूछे कौन है तेरा रह गुजर, मैं कहता हूं मेरा वतन मेरा हिंदुस्तान है वो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा के साथ। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। तो आज भी हम बात करेंगे अपने देश की, लेकिन पहले सुनते हैं ये देशभक्ति वाला मधुर संगीत गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं अपने भारत की। भारत की स्वतंत्रता आसान नहीं थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और ऐतिहासिक संघर्ष था, जिसमें हजारों वीरों और सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को तीन श्रेणियों में रखा गया, नरमपंथी नेता, क्रांतिकारी और समाज सुधारक, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में अद्वितीय योगदान दिया। जहां महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जन आंदोलन का नेतृत्व करते, वहीं सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज INA का गठन करते और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा देते। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ देश के युवाओं में क्रांति की अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी थे, जिन्हें मात्र 23 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। सरदार

वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने आजादी के बाद रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। वहीं बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो लाल बाल पाल के प्रमुख नेता रहे, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का उद्घोष किया। और महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाली झांसी की रानी, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसी महान हस्तियों ने भारत के नवनिर्माण में स्वतंत्रता के साथ अहम भूमिका निभाई। अब आप समझ पाए होंगे कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली।

लाल रक्त से धरा नहाई, श्वेत नव पर लालिमा छाई, आजादी के नवोद्घोष पे सबने वीरों की गाथा गाई। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष की ध्वनि चारों ओर है छाई, भगत, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी से आंखें भर आईं। ए भारत माता, तुझसे अनोखी और अद्भुत माना हमने पाई, हमारे रगों में तेरे कर्ज की एक एक बूंद समाई। माथे पर है बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई, सरहद पे खड़े रहकर आजादी के रीत निभाई। जी हाँ साथियों, भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य बना, जो महान क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रतीक है। स्वतंत्रता सेनानियों ने विभिन्न संघर्षों, आंदोलनों, लड़ाइयों और विद्रोह में भाग लिया,

जिनमें से कई ने राष्ट्र की संप्रभुता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्रता की आवो हवा में खुलकर सांस ले पाते हैं, जी पाते हैं, स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे वीर जवानों को हमारा शत शत नमन, ऐसे वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन, ऐसे वीर सेनानियों को हमारा शत शत नमन।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में आज के लिए बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8 बजे हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी के गाए गीतों को।

कार्यक्रम की प्रस्तुति में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चौधरी का चांद फिल्म का गीत। शकील बदायूनी की रचना को संगीतबद्ध किया था रवि ने।

मोहम्मद रफी को भी आपने सुना आरजू फिल्म में। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। रास्ते अलग करके तुम कहाँ जाओगे, हम तब भी महकेंगे जब पतझड़ का मौसम होगा।

मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे सनम में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा था ओपी नैयर ने। पढ़ा ही नहीं वो आखिरी खत तेरा मैंने, तुझे ही उम्र भर रखा मेरा मैंने।

मोहम्मद रफी की आवाज में भी आपने सुना कन्यादान फिल्म का गीत। हंसदा जयपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। आंखों में तेरी कोई करिश्मा जरूर है, तू जिसको देख ले वो बहकता जरूर है।

द ड्रीम फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को अनिल बख्शी की रचना को संगीतबद्ध किया था आर डी वर्मन ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और इसमें आज आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए गीतों को।

मोहम्मद रफी की आवाज में भी आपने सुना प्रिंस फिल्म का गीत। हर्षद जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी आशा भोसले की। एसएच बिहारी की रचना को संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

कश्मीर की गली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

आशा फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कुदरत से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है मशहूर सुल्तानपुरी ने, संगीत पर किया है आर.टी. वर्मन ने।

कुदरत फिल्म में भी अपने सुने लता मंगेशकर को मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से सवारा था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म हिना से। गीत को गाया है लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर ने। गीत संगीत है रविंद्र जैन का।

हिना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें

0: सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
4: We heard 26 delegates from...
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

0: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना NDRF सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स

0: उस नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानेब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाईस खलीज में हजारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मंसूबा अक्वामे मुत्तहिदा की बैनुल अक्वामी बहरी तंजीम आईएमओ के तआवुन से तैयार किया गया है, ताकि इलाकाई तनाज़ात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुजरगाह से जहाज़ों की महफूज आमद रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बैनुल अक्वामी बहरी तंजीम के मुताबिक खित्ते में 11,000 से ज्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलावार तरीके से निकाला जाएगा और आमद रफ्त के मनसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। तेहरान में वाक़ भारतीय सिफारतखाने ने ईरान में सिक्योरिटी की सूरतहाल में बेहतरी के मद्देनज़र भारतीय शहरियों के लिए सफ़र से मुतालिक नज़रसानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। सिफारतखाने ने हालिया मुसबत हालात वाक़यात और मजमूई सूरतहाल में बेहतरी के तनाजुर में भारतीय शहरियों को ईरान के सफ़र के बारे में संजीदगी से गौर करने का मशवरा दिया है। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
1: एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सफारतखाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम हैं या नागुजेर वजूहात के बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात बरतें, सूरतहाल पर मुसलसल नजर रखें और मकामी हालात से बाखबर रहें। सफारतखाने ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मोतबर जराए से वहां के हालात व वाकयात पर नजर रखें और मकामी हुकाम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। ईरान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों और नए आने वालों को जल्द अज जल्द सफारतखाने में अपनी मालूमात दर्ज कराने का भी मशवरा दिया गया है। इसके अलावा सफारतखाना ने सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी होने वाली ताज़ा मालूमात और हिदायत पर बाकायदगी से नजर रखने की तलकीन की गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: मगरबी बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके के नजदीक जेर तामीर एक गोदाम के मुनहदिम होने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गोदाम के मुनहदिम होने से कई मजदूर भारी लोहे के मलबे तले दब गए हैं। एसएसकेएम अस्पताल में 5 अफराद को मुर्दा करार दिया गया, जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी जाय हादसा पर पहुंच गए हैं। रियासती वजरा अग्निमित्र पॉल और डॉक्टर इंद्रानिल खा भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाय हादसा पर पहुंचे। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ, पुलिस, आग बुझाने के अमले, इमरजेंसी सर्विसेज और भारतीय फौज की टीमें तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अंदेशा है कि और भी कई मजदूर मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट नवन्ना ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। ये नंबर्स हैं 1006979810807 0332214352 6 और 0332253515185। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारतीय फौज, एनडीआरएफ, पुलिस और आग बुझाने वाले अमले के अफराद मुश्तरका तौर पर कोलकाता के तरातरा इलाके में जेर तामीर गोदाम के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाईयों में मसरूफ हैं। जख्मियों का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने जाय हादसा का दौरा किया और इमदादी अहलकारों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी आज रात उन्हें हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद वो कल असेंबली में इस बारे में बयान देंगे। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केपनियार जिले के तहत यजाली सर्कल में नेपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नेपको के प्रोजेक्ट के सरबरा ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुनबों से ताजियत का इजहार किया है, जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की कि हुकूमत मुतासर कुनबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव, राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सैलाब से मुतासर अफराज से

0: अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि लोगों की हिफाजत हुकूमत के लिए निहायत अहम है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश ने शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ और सोनीपत में पूर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमायाँ तेजी का खतरा दरपेश है, जबकि अगले एक से दो दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायात पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: नायब सदर जनाब सीबी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया, जिसका उन्वान है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इकतदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नेज आईन में पेश किए गए इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तिताम इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सामाजिक इक्तिसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खुसूसन कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबोहवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जरम बादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात की मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थी। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जरम बादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन, 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तजारत, 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरलम के विजिनजाम बैनुल अक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक 1,000वां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगमेल बंदरगाह पर एमएससी लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिनजाम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट और दाखिलों के अमल में मुबैना बेजाबतगियों की तहकीकात करने के लिए सीआईडी की एक टीम रिम्स पहुंची। सीआईडी की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। ये तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज ना अहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेशगोई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब, गुजरात और

मध्य प्रदेश निज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकोवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रियर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोह्योन के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है

0: उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं,
1: जी
0: तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें दो बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का यह बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
1: जी जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था।
1: जी
0: पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें यह भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस

0: जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो
1: जी
0: मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है। तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं

0: निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो
0: जी
1: मच।
0: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और
0: जी
2: मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
0: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम को बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
0: जी जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, इसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
0: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे से।
0: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी ऐसा मैं सोचती थी, पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
3: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए। तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं, जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
3: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट

0: कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट एवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
0: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टूडे
1: हाँ,
0: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस।
0: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशन एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
0: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश दयाल। वंश दयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, फिर बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहां के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको, बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको, कि हाँ उसकी हालत ऐसी है, पर मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ ही कैन डू वेल, ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने तो काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने तो काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी, नाइक ही इज टुडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन बन जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मैं चला लेता अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
2: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में, कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ,

0: और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उनमें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। जब मैं एकदम छोटा था तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे। मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबेड कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ, तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था। तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है। तो
1: बिल्कुल
2: इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
1: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को, उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
2: संगीत का
1: जी
2: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
3: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
3: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय

0: मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी, और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: चर्चा का विषय है
3: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब समय है फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म ओमकारा से। गीत को गाया है राकेश पंडित, रेखा भारद्वाज ने। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल भारद्वाज ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना राकेश पंडित और रेखा भारद्वाज की आवाज में। फिल्म का नाम था ओमकारा। गुलजार के लिखे गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने। अब सुनते हैं जसविंदर नरूला की आवाज में जानम समझा करो फिल्म से गीत। शब्द रचना मशरूर सुल्तानपुरी की, संगीत रचना अनु मलिक की।

जानम समझा करो इस फिल्म में भी आपने सुना जसविंदर नरूला को। मशहूर सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से सवारा था अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ये जवानी है दीवानी से। आवाजें हैं रेखा भारद्वाज टोची रैना की। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। आवाज़ है जावेद बशीर की, संगीत प्रीतम का और शब्द रचना रजत अरोड़ा की।
1: कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है इतना।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में अभी आपने सुना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में जावेद बशीर को। रजत अरोड़ा के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का राग बिहाग में ख्याल गायन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह प्रातःकालीन सभा में 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।